0: ये जो जीवन की लय है, सब कुछ पहले से ही तय है। इसलिए जय रघुनंदन, जय सियाराम।
1: श्री रामचंद्र आशीष पारिजात,
0: तुम ही प्रणाम। आप सुन रहे हैं समय।

जय रघुनंदन, जय सिया राम। आप सुन रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रेडियो का ये खास प्रोग्राम हमारे संग संगीता माल्या दुबई से। और जब राम जी

आप सुन रहे हैं पायो जीवन राम रतन मोहन पायो प्रोग्राम राम रेडियो से डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये राम रेडियो है। आपकी आवाज आपकी पहचान। आज की पायलट सिंगर

ऐसा ही सुख हमें मिला है इस प्रोग्राम को सुन के संगीता जी। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। बहुत आभार इस प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट को सार्थक

0: डिजिटल वॉइस ओवर राम रेडियो का विशेष आयोजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
1: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानियां, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल हैं, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्याशंकर, गायत्री जगन्नाथन, आभा माथुर, शर्मिष्ठा सारंगी

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठें खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाएं तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधि भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मोंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भर

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहां भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

बहुत खूब दोस्तों, आदि शक्ति को सनातन निराकार परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी बड़े एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ, और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर, और भाव से चलें तो बहुत पास। नजरों से देखें तो कण कण में, और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरूर सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

0: माँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाय समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्ते।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

ब्रज सुख पाइए। जो बारे मास करे एकादशी, जो बारे मास करे एकादशी, तने अंतर बसे अविनाशी, अने अंतर बसे अविनाशी। नहीं कर से तो जासे हाथ कसी, नहीं कर से तो जासे हाथ कसी।

0: अरे ये लाहौर लाखो और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
1: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
0: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
1: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
0: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ आ गए?
1: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा,
1: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
0: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
1: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
0: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
1: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
1: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो। तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
4: तवा बुधिरायो जयपुर रेडियो ते

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान,
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।

जयपुर रेडियो के श्रोता सुन रहे थे गीता का 11वां अध्याय परमा एकादशी के उपलक्ष्य में। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुने एकादशी भजन।

एक ऐसा सिंगर जो न केवल बॉलीवुड को पूरी तरह एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा, बल्कि इस यूनिवर्स को एक ऐसी आवाज दे गया जिसको सुनकर हम ईश्वर, भगवान या अल्लाह की आवाज की कल्पना के नजदीक पहुंच जाते हैं। आज के इस एपिसोड में आवाज के इस सम्राट को अपना स्वर नमन दे रही थी अर्जुन रानू 16 और आपका साथ दे रहे थे अनिल शर्मा 1961। और अब आंखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत को इस मंच पर लेकर आए हैं अर्जुन रानू के संग सोनी शिवकुमार।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चु रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चु रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चु रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मनमोहन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में, जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्चुरानू का फनी भूषण। और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्चुरानू के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

राजा रानी की प्यार की कहानी हमने सुनी अर्जुन रानू और किशोर फॉर यू की जुबानी इस गीत में, और इस सुरीले से शॉर्ट वर्जन के साथ ही जयपुर रेडियो के इस मंच से मैं आरजे भूमिका आपको एक बार फिर बतला देती हूँ इस मंच के नंबर। हमारे नंबर हैं 9352-784-724। इस नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

बहुत शुक्रिया आरजे भूमिका। और इसके बाद अब आ गए हैं हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, और अनुराग लेके आए हैं अपनी सुरीली आवाज में अपने गाए हुए कुछ गीत। आइए शुरुआत करते हैं, सुनते हैं आपका ये पहला गीत।

प्यार मांगा है तुम्हें से ना इनकार करो। और ये आवाज रही हमारे सुरीले सिंगर अनुराग की। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास एपिसोड। हमारे संग है अर्चुरानो 16 और अनुराग सिंगर के रूप में। आइए सुनते हैं अगला गीत अनुराग की आवाज में।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, और यदि गीतों से प्यार हो जाए, बेशुमार हो जाए, तो आप जयपुर रेडियो पर आ जाएं। यही कह रहे हैं अनुराग, हमारे आज के मेल सिंगर। आपकी आवाज, आपकी पहचान और बहुत सारे तकनीकी कारणों के वजह से हम अनुराग से यही अनुमति लेंगे और जारी रखेंगे प्रोग्राम। भूमिका आज की सिंगर अर्चुरानू के संग।
1: और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चुरानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुल रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चुल रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चुल रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का फनी भूषण, और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्जुन रानू के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फिल्मों का नाम लेते ही हॉलीवुड और बॉलीवुड का नाम तुरंत जहन में आ जाता है। वैसे तो फिल्में 1940 से बन रही थीं, पर उनका सुनहरा समय 1970 से शुरू हुआ, जिसमें एक से एक हिट फिल्म्स रिलीज हुई, जैसे कि मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरा नाम जोकर, जीवन मृत्यु, सफर, आपकी कसम, लोफर, प्रतिज्ञा, कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, यादों की बारात, डॉन, शोले, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्म्स। ये वो फिल्में थीं जिनकी स्क्रीनिंग सालों तक चलती रहीं और जिनका संगीत आज तक अमर है। चलिए आज उसी दौर के कुछ यादगार नगमे सुनते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1970 की एक फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, जिसमें धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर थीं। इस फिल्म का झूमता संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं अनिल जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत गीत पेश किया। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1970 की फिल्म जीवन मृत्यु से है, जिसमें धर्मेंद्र और राखी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। आइए इसी फिल्म का प्यार भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर आदेश और डॉक्टर तरुणा जी की मधुर आवाज में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1970 की एक सुपरहिट फिल्म सफर से है, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर थीं। इस फिल्म का मदभरा संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने और खूबसूरत गीत लिखे इंदिवर जी ने। असित सेन को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। आइए इसी फिल्म का एक मदभरा गीत सुनते हैं विद्या जी और बिस्वजीत जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत गीत पेश किया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की एक सुपरहिट फिल्म लोफर से, जिसमें धर्मेंद्र और मुमताज थीं। इस फिल्म का मस्ती भरा संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। आइए इसी फिल्म का ये खूबसूरत गीत सुनते हैं मुकेश गुलानी और किशोर जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत प्रस्तुति थी। फिल्म लोफर के गीत और संगीत बेहद मस्ती भरे थे, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी जी का जादू भरा हुआ था। आइए इसी फिल्म का एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या समा बांध दिया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1974 की एक और सुपरहिट फिल्म आपकी कसम से, जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज थीं। इस फिल्म का झूमता हुआ संगीत दिया आरडी बर्मन जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म का संगीत उस साल का बिना का गीत माला की सरताज गीतों में भी था। आइए इसी फिल्म का एक मजेदार गीत सुनते हैं किरण नाडकर्णी और श्वेता सम्बा सिवन जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1975 की फिल्म प्रतिज्ञा से है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थी। इस फिल्म का मस्ती भरा संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी जी ये गाना गाते हुए नाच रहे थे और धर्म जी को बोले कि मैंने अपना काम कर दिया भाई, अब आगे आपका काम। इसी फिल्म से धर्म जी को उनका सिग्नेचर स्टेप भी मिला। आइए इसी फिल्म का ये मस्ती भरा गीत सुनते हैं संजय हारने और संजीव जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार प्रस्तुति थी। आइए अगला गीत सुनते हैं 1976 की मशहूर मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्म कभी कभी से, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह थीं। इस फिल्म का शानदार संगीत दिया खय्याम जी ने और गीत लिखे साहिर लुधियानवी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट मेल सिंगर, बेस्ट डायलॉग्स अवार्ड भी मिला। आइए इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं मेरी और वरुण जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1976 की फिल्म नागिन से, जिसमें सुनील दत्त और रीना रॉय थीं। इस फिल्म का संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं तनुजा मुंद्रा और संजय गुप्ता जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा और राखी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया कल्याण जी और आनंद जी ने और गीत लिखे अनजान ने। आइए इसी फिल्म का ये शानदार गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक और सुपरहिट फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, जिसमें शशि कपूर और जीनत अमान थीं। इस फिल्म का बेहद मशहूर संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं इंदिरा जी की मधुर आवाज में।

वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुख्य

0: आयुर्वेदा।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। आज हम भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक झिलमिलाता सितारा लेकर आए हैं, जो कि न सिर्फ अपने गीतों से बल्कि अपने काम से भी लोगों की जिंदगियों में खुशियां भर देते हैं। जी हाँ, अपने श्रोताओं की मुलाकात करवा रहे हैं जयपुर के जाने माने सर्जन डॉक्टर मनीष कल्ला से। स्टूडियो में स्वागत है आपका मनीष।
2: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर रेडियो के डिजिटल स्टूडियो के अंदर आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये हमारी खुशनसीबी है मनीष। तो सबसे पहले हमें आप जयपुर के बारे में बताइए। आज के समय में ये शहर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए बहुत जाना जाता है, और इसके साथ ही कुछ अपने बारे में भी बताइए।
2: सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। जहाँ तक रहा सवाल जयपुर शहर का, जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पिंक सिटी
1: जी,
2: एंड इस गुलाबी नगरी की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी खासियत यहाँ का खाना, यहाँ की रजवाड़ी पोशाकें और यहाँ के राजमहल, और इसी की वजह से पूरी दुनिया से लोग बाग यहाँ पर ना सिर्फ रहने के लिए बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स, रिसोर्ट इन सब के लिए आते हैं। मैंने, मेरी ये खुशनसीबी है कि मैंने SLS मेडिकल कॉलेज, जो जयपुर राजस्थान, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां से मैंने अपनी डिग्री प्राप्त करी।
1: क्या बात,
2: मैं यही का पला बड़ा हूँ। और जहां तक रहा कि मेरी मदर भी डॉक्टर थी, और आज की तारीख में अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी मदर डॉक्टर थी।
1: अरे वाह, ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई हमें। और इसी के साथ मनीष, हम आपका पहला गीत लेते हैं, क्या सुनवा रहे हैं हमें?
2: मेरी मदर का फेवरेट सिंगर थे मोहम्मद रफी साहब, उनका एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, आज की रात मेरे दिल की सलामी दे।
1: अरे
2: वाह, चूंकि मैं आया हूँ तो आप लोग मेरे दिल की सलामी दे।
1: जी जी जी जी, तो लीजिए आपका गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।

0: खूबसूरत सलामी आपके दिल ने दी हमारे श्रोताओं के लिए मनीष, मजा आ गया। तो पेशे से आप सर्जन हैं, बहुत ही बिजी लाइफ होगी आपकी। हम ये जानना चाहते हैं कि संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी और इस शौक का आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों से तालमेल कैसे बिठाते हैं।
1: मेरी संगीत की रुचि जो है वो मेरी नानी जी की वजह से बनी। मुझे मेरी नानी जी और नाना जी ने पाला पोसा, क्योंकि उन्होंने पाला पोसा तो मेरी नानी जी जो थी क्लासिकल म्यूजिक टीचर भी थी और सिंगर भी थी, तो वहां से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी कॉपी करते करते उनसे थोड़े बहुत गुर सीखते मैंने गाना शुरू किया। तो 5 साल की उम्र में जब स्कूल के अंदर मेरा पहला स्टेज प्रोग्राम हुआ, उस वक्त मेरी नानी जी थी वहां पे, तो यहां से मेरा संगीत का सफर शुरू हुआ।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज आप हमारे पास स्टूडियो में आए हुए हैं, तो हम इस बात का फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी मीठी सी आवाज में कुछ यहीं पर 2 लाइनें गुनगुना दीजिए अपने किसी भी पसंदीदा गीत का।
1: जी, ये अभिजीत जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, एक का दिल एक की धड़कन मूवी से।
0: जी जी।
1: रेशम जैसी है राहें खोले हैं बाहें ये वादियां। और अभी बरसात के मौसम में इससे बेहतर गाना और कोई होगा।
0: वाह मनीष वाह, आपकी सुर और ताल की समझ की दाद देनी पड़ेगी, आपने बेहद खूबसूरती से समा बांध दिया। तो हम अपने श्रोताओं को जल्दी ये गाना सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि अपने शौक का आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं।
1: संगीत एक ऐसी दवा है जो सारे सारे मर्जों का इलाज है।
0: जी,
1: तो जहाँ कभी भी मैं थक कर आता हूँ और परेशान सा होता हूँ तो यही एक जगह है जो मुझे बना देती है। आता हूँ, सुनता हूँ, गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ, अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ। और इसी तरीके से मेरी जो टॉक्सिसिटी है, बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी।
0: जी जी।
1: व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर और लेस मेंटल हेल्थ, म्यूजिक एक सबसे अच्छी थेरेपी है जो सारी की सारी टॉक्सिसिटी को निकाल कर आपको एकदम से तरोताजा महसूस कर पाती है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से जो एप्स बनी है उससे बहुत मदद मिल रही है। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि इस म्यूल ऐप पर डॉक्टर मनीष कल्ला एक जाने माने सिंगर हैं और इनकी एक बड़ी स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है वहां पर। तो इसी के साथ हम आपका गीत सुनवाते हैं।

0: बहुत खूब मनीष। आजकल सोशल मीडिया पर आता रहता है अक्सर कि कुछ डॉक्टर्स अपने मरीजों के इलाज के वक्त नाचते भी हैं, गाते भी हैं। कोविड के वक्त से शायद ये चलन शुरू हुआ, तो क्या आप भी अपने पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा करते हैं?
1: ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल मुझसे किया, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर और जब मैं जूनियर सर्जन हुआ करता था, तो
0: जी
1: ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम लोगों का ये तब से रिवाज था। गाने चलते रहते थे वहां पर, पुराने मोहम्मद रफी साहब के,
0: अच्छा
1: किशोर कुमार साहब के, और हम लोग गुनगुनाते रहते थे, हम लोग गाते रहते थे। उससे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद मिलती थी, और उसके साथ साथ जो कि सर्जरी का प्रेशर हम लोगों के ऊपर आ रहा है वो निकल जाता था दिमाग से। तो हम लोगों की तो ये परिपालना ये काफी लंबे समय से है, और आज की तारीख के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगीत जो है वो आपकी आत्मा को, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। तो उसी की वजह से आज की तारीख के अंदर म्यूजिक थेरेपी हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि पेशेंट को, और इस तरीके की चीजें आई हैं सामने जहां पर इवन कैंसर के मरीज तक म्यूजिक थेरेपी से, उन लोगों का पेन काफी कम हुआ है। तो म्यूजिक बहुत ही अच्छा है मेंटल हेल्थ और पेन के लिए, इवन बच्चों के लिए भी। अगर आप जो है कुछ गुनगुनाते हैं तो उनको तुरंत से नींद आ जाती है, तुरंत से शांत हो जाते हैं। इज अ मेडिसिनल प्रेस्क्रिप्शन नाउ डेज।
0: क्या बात है, ये तो वाकई एक बहुत ही दिलचस्प बात आपने बताई है, और लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि संगीत का क्या इम्पोर्टेंस है हम सबकी लाइफ में। तो इन सभी दिलचस्प बातों से एक छोटा सा विराम लेते हैं और आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं।

0: मनीष कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई खड़ा रहता है जो कि उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा और किसे देना चाहेंगे?
1: मैं सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगा। महादेव का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कोशिश करता हूँ महादेव की कई भी चीजों के ऊपर आचरण करने का।
0: क्या बात है?
1: इसके बाद अगर मैं यहाँ पर पृथ्वी की कम बात करूँ तो मेरे नाना नानी का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया। मेरे अंदर जो भी वैल्यूज डाली गई उनके थ्रू डाली गई। एंड उसके बाद मैं मेरी माँ का, क्योंकि मेरी माँ का डॉक्टर नहीं होती तो मैं नहीं होता, ये बात मैं पहले भी बता चुके
0: हैं।
1: और इन सारी चीजों के साथ साथ जिस एक और इंसान का जिसका मैं बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, वो है मेरी अर्धांगिनी ऋचा।
0: वो क्या बात है?
1: मेरे सपोर्ट में अगर वो नहीं खड़ी होती तो जितनी जगहों पर मैं बाहर गया, आज की तारीख में भी मैं अफ्रीका में हूँ, मैं अफ्रीका में सिर्फ इसीलिए हूँ कहीं ना कहीं उसने मुझे ये संबल दिया हुआ है, ये कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि नहीं आप वहाँ पर काम कीजिए, मैं यहाँ पर परिवार संभालती हूँ।
0: जी,
1: ये सारी चीजें, एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग वुमन, इट इज नॉट दैट शी इज नॉट अ वर्किंग वुमन। तो ये सारी की सारी चीजें, कई सारी जगहों पर उसने भी सेक्रीफाइस किया है, कई सारी जगहों पर मैंने भी सेक्रीफाइस किया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इफ शी हैड नॉट सपोर्टेड मी आई वुड नॉट हैव बीन इन
0: जी। बहुत ही आप धरती के साथ जुड़े हुए इंसान हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में मनीष जी बात यह है कि बहुत लोग कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही होते हैं जो वाकई श्रेय अपने परिवार वालों को देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर। तो हम और हमारे श्रोता चाहेंगे कि इन सब के लिए जिनको भी आपने श्रेय दिया है, आपकी अर्धांगिनी, आपकी मम्मा और आपके नानी नानू, उनके लिए आप एक गीत हमें प्यारा सा सुनवा दीजिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष कल्ला। आपसे ये गुफ्तगू बहुत ही मजेदार रही। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए दो शब्द कह जाइए।
1: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर आपके और आपके श्रोताओं के समक्ष खड़ा हूँ।
0: थैंक यू।
1: और श्रोताओं के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि संगीत गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात डॉक्टर मनीष कल्ला के साथ, जो कि जयपुर के जाने माने सर्जन हैं और फिलहाल साउथ अफ्रीका में किसी काम से वहां पर रह रहे हैं। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में उन्होंने आने के लिए अपनी मसरूफ जिंदगी से कुछ टाइम निकाला। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारे के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहे। रब राखा।

0: महफिले गजल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्ते, आदाब। सुनने वालों को लक्ष्मी का प्यार भरा सलाम। आओ झूमे गाये के जानिब, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आज के इस महफिल में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, जगजीत जी ने बेशुमार गजलों को अपनी रूह परवर आवाज से सजाकर हमेशा के लिए हयाते जावेदा बख्श दी है। ताहम कुछ अनमोल जवाहरात हैं जिनमें खूबसूरत शायरी, बेपनाह मौसीकी और अजीम पेशकश मौजूद हैं। उन्हीं नायाब मोतियों में से एक मोती यानी एक एल्बम को रेयर जेम्स का एजाज हासिल है। आज के महफिल के फनकार उसी एल्बम से कुछ चुनिंदा गजलों को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगी जनाब मनीष सूद जी को। वे हमारे लिए पेश करेंगे जब भी आती है तेरी याद, जिसके शायर हैं कृष्ण अदीब साहब। मनीष सूद जी।

वाह मनीष जी, आफरीन आफरीन, क्या खूब पेशकश थी। ये थे मनीष सूद जी अपने खूबसूरत अंदाज और गुदाज भरी आवाज में इस गजल को इन्होंने पेश किया। दोस्तों, हमने अभी अभी सुना था कि जब हमें और आपको किसी की याद आती है तो हमारी कैफियत क्या होती, लेकिन क्या आलम होगा जब वह शख्सियत आपसे रूबरू हो। ना मजा है दुश्मनी में, ना है लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता, कोई यार यार होता। तो चलो हम चित्रा सिंह जी की पुरसोस आवाज में पेश करदा दाग दहलवी की एक हसीन गजल को समाप्त करते हैं। जयपुर रेडियो के लिए इसे पेश करने आ रही हैं शोमा सी रॉय। अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता,

वाह, बहुत खूब शोमा जी, बेहतरीन पेशकश। दोस्तों, जब दो दिल एक दूसरे की चाहत में जज्बातों की आंधी से गुजरते हैं, वह जज्बा है इश्क। लेकिन जिगर मुरादाबादी साहब कहते हैं, जिंदगी न देख जलवाए आफताब बन, शौक को रहनुमा बना जर्रे में रोशनी न देख, क्योंकि इश्क फना का नाम है। इस खूबसूरत गजल को अपनी सुरीली आवाज में पेश करने आ रही हैं अनुराधा जी।

वाह अनुराधा जी, बहुत खूब। ये जयपुर रेडियो पर आपकी पहली पेशकश थी जिसे आपने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, आपका ये सफर यूं ही चलता रहे। दोस्तों, जनाबे जिगर मुरादाबादी ने ना सिर्फ उर्दू गजल को एक पहचान वो परवाज बख्शी बल्कि शहनशाह तगज़ल का खिताब भी हासिल किया। इनकी एक मशहूर गजल जो इंसानी जज्बात व एहसासात को खूबसूरत अंदाज में बयां करती है, सुनते हैं इसे डॉक्टर अंकित अवस्थी की आवाज में। मुझे दे रहे हैं तसल्लियां, जनाब अंकित अवस्थी जी।

वाह अंकित जी, सदाफरी। दोस्तों, गजल एक ऐसा फन है जिसमें महबूब से बातें होती हैं। इश्क और मोहब्बत के जज्बात को लफ्जों में पिरोकर गुनगुनाया जाता है, साथ ही साथ गजल के जरिए शिद्दते गम का भी इजहार किया जाता है। इसमें टूटे हुए दिलों के लिए मरहम और मुदावा का भी सामान होता है। अब हम दावत देते हैं आशुतोष भट्ट जी को, ये पेश करेंगे कृष्ण अदीब जी की ये नज्म, शहरों शहरों आज है तन्हा, जनाब आशुतोष भट्ट जी।

वाह आशुतोष जी, बहुत खूब, क्या कहने, आपने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों, 19वीं सदी में मुगलिया सल्तनत का जाहो जलाल अब जवाल का शिकार हो चुका था। तभी दिल्ली उर्दू के अजीम शायरों का मरकज बन गया था, जिनके शहंशाह मिर्जा असदुल्ला खान गालिब थे। गालिब साहब न सिर्फ इश्को मोहब्बत और सोजो शराब की बातें करते थे, बल्कि जिंदगी की नशेब व फराज के बारे में भी अपने ख्यालों और जज्बों का इजहार करते थे। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि उन्होंने तकरीबन आधी जिंदगी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपना मुकदमा पेश किया और सालों पेंशन की बहाली के लिए कानूनी चाराजोई करते रहे। और ये ऐसी शख्सियत थी जिसकी शायरी इस्तियारों से पुर थी। वह अपनी एक गजल में मजा से भरा एक कानूनी इस्तियारा यूं पेश करते हैं। फिर खुला है दरे अदालत ए नाज, गर्म बाजार ए फौजदारी है। तो चलिए सुनते हैं संजीव नागर जी की आवाज में इस बेहद खूबसूरत गजल। जनाब संजीव नागर जी।

0: वाह संजीव जी, क्या कमाल का फन आपने पेश किया है। दोस्तों, आज की ये हसी शाम जिससे हम सब सामाई लुत्फंदोज हो रहे थे, अब मंजिल की आखिरी पड़ाव पर है। मैं लक्ष्मी बालचंद्रन अपने तमाम सुनने वालों और जयपुर रेडियो का शुक्रिया इस शेर से अदा करना चाहती हूँ। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। प्रस्तुत है प्रोग्राम बातें दिल की, और बातें दिल की लेके आई हैं सुषमा, और सुषमा के साथ है जाने माने नाट्य निर्देशक

0: को मंजिल पा नहीं सकते। हफीज बनारसी की ये पंक्तियां हमारे आज के मेहमान की जीवन यात्रा या यूं कहे कर्म यात्रा पर सटीक बैठती हैं, जो पिछले 45 वर्षों से रंग कर्म से जुड़े हुए हैं और अपनी कला के रंगों से नित नई तस्वीर बनाकर सभी को आकर्षित करने का फन रखते हैं। राजस्थान के जाने माने नाट्य लेखक निर्देशक व्यंगकार श्री अशोक राही, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राजस्थान साहित्य अकादमी अवार्ड, सवाई माधो सिंह कला अवार्ड, बेस्ट थिएटर प्रमोटर अवार्ड हरियाणा, ऐसे बहुत से अलंकरण के अलावा दर्शकों के दिलों के प्यार को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए हर नए पल में कुछ नया रचने की कला के महारथी हैं। नमस्कार अशोक राही जी।
1: नमस्कार। नमस्कार सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
0: आपके दिल की बातें जानने का मौका आज हमारे पास आया है, तो लेके चलिए हमें अपने बचपन के शहर घर आंगन में और उस पल में जब आपके मन में ये विचार आया कि पहली बार कि कलम और रंगमंच आपके जीवन साथी बनेंगे।
1: असल में जैसा कि अक्सर होता है, कई बार हमारे जो बचपन में जो हमारी स्मृतियां होती हैं, बचपन में जो हम जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल का आदमी के ऊपर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। ये तो दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी यही हुआ। बचपन में मैं अपनी बुआ जी के साथ रामलीला और इस तरह हमारे शहर में, मैं आपको बताऊं कि मैं एक छोटा सा शहर है अलवर, उसका रहने वाला हूं, तो उस शहर में ये रामलीला होती थी, भर्तरी महाराजा भर्तृहरि नाटक होता था, तो बहुत चार पांच छह साल का था तब वो देखने जाते थे, तो उसका कुछ प्रभाव रहा होगा। और उसके बाद में ये संयोग की बात है कि मेरे पिता सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, हमारे सिनेमा हॉल थे राजस्थान में दो तीन, और मैं बचपन में मेरा जो खेलने का समय था वो ज्यादातर सिनेमा हॉल में बीतता था कि स्कूल से आए अपना बस्ता घर पे पटका और जाके सिनेमा में बैठ गए। और ऐसा भी नहीं कि कोई पूरा सिनेमा देख रहे हैं, पर कभी 10 मिनट देखा, कभी 15 मिनट देखा, कभी ना देखा, तो इस तरह वो उस जमाने की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये 1965, 66, 67, 68, 68, उस जमाने की जो फिल्में थी वो बहुत प्रभावशाली फिल्में हुआ करती थी। राज कपूर साहब थे, राज कपूर की संगम उन दिनों मैंने जितनी भी मेरे समझ में आई देखी, देवन साहब की गाइड देखी, दिलीप कुमार साहब की जो गंगा जमुना फिल्म है वो देखी, मनोज कुमार की उन दिनों बड़ा नाम था, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म थी शहीद, और उसके बाद में उपकार फिल्म आई उनकी, तो ये सारी फिल्में देखते देखते उनका संगीत, वो सारा माहौल हो सकता है कि वो मेरे दिमाग में रहा हो। और फिर कॉलेज के जमाने में जब मैं पढ़ता था, मैंने पहली बार मैं नाटक से जुड़ा जी।
0: जी, तो नाट्य लेखन की यात्रा यूं कहें कि तब से आरंभ हुई जब आप कॉलेज में पढ़ते थे।
1: जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नाट्य लेखन की यात्रा तब से शुरू नहीं हुई, नाटक के प्रति जो अनुराग है, कला के प्रति जो बात है दिल में कि ये कुछ है, कुछ करना चाहिए। वैसे मूलतः मैंने विज्ञान पढ़ी है, आपने भी विज्ञान पढ़ी है मुझे पता है, तो लेकिन विज्ञान के साथ साथ ये कला के इस क्षेत्र में फिर कुछ जीवन चला जाएगा ये उस समय नहीं सोचा था। मैं ऐसा कोई सोचता भी नहीं है मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा, अपन लोग कहते हैं कि बच्चे बचपन से ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, एक धारा होती है जो उस तरफ उसको ले जाती है और वो अवचेतन की धारा होती है जी सुषमा,
0: बहता चला जाता है उस धारा में। तो ऐसा ही जो असर आप पर फिल्मों में डाला या नाटकों ने डाला वो आगे जाकर आपके जीवन से जुड़ गया, लेकिन उस समय शायद आपका भी यही मानस रहा होगा जैसे उस वक्त सोचते थे सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कि पढ़ ले और उसके बाद एक नौकरी मिल जाए, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने ये किया कि अपना जो ये नाटक का और अभिनय का और विशेषकर उस समय साहित्य का, साहित्य से जुड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू से ही बचपन से ही रहा। उस जमाने में बहुत साहित्य भी ऊंचे दर्जे का साहित्य पढ़ा, हालांकि ऐसा नहीं है उस समय इब्ने सफी और ओम प्रकाश शर्मा और इनके उपन्यास

0: भी वेद प्रकाश का मोज, इनके जासूसी उपन्यास भी बहुत पढ़े जाते थे, हम 10वीं 11वीं थे वो भी पढ़े, लेकिन
1: उसके साहित्य ने आप पर असर डाला।
0: जी जी जी, और साहित्य भी लिटरेचर भी पढ़ा। जी हाँ जी सुषमा,
1: तो नाट्य लेखन की यात्रा हमें बताएं कब से आरंभ हुई।
0: असल में नाट्य लेखन तो मेरा बहुत बाद में शुरू हुआ। शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत में हमारा शहर, मैं अपने शहर के की नाट्य उसके बारे में बताता हूँ, अलवर शहर की जो बात कर रहा हूँ।
1: हाँ।
0: वहां पर एक नाटक होता है, उस नाटक का नाम है महाराजा भर्तृहरि
1: जी,
0: और वो कमाल का पारसी रंगमंच का, पारसी शैली का एकमात्र नाटक है जिसको अलवर शहर आज भी जिंदा रखे हुए है। प्रति वर्ष उस नाटक के दशहरे से लेकर दीपावली तक लगभग 15-20 प्रदर्शन होते हैं, और हर प्रदर्शन में कम से कम 8-10 हजार लोग उस नाटक को देखते हैं, टिकट से देखते हैं, टिकट खरीदते हैं, और अब तो मेरे ख्याल से उसका टिकट 500 रुपए इस तरह का है, हमारे जमाने में बहुत कम 1 रुपए 2 रुपए का हुआ करता था। और वो नाटक एक पारसी रंगमंच की परंपरा को लेकर चल रहा है, तो ऐसे नाटक उस शहर में हमने, उस जमाने में मेरे दोस्त हुआ करते थे, दुर्भाग्य से अब वो नहीं रहे हमारे साथ, ईश मधु तलवार नाम के एक दोस्त थे, बलवंत तक्षक नाम के एक दोस्त थे, देव कुमार मुखर्जी नाम के एक दोस्त थे, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने शहर में एक आधुनिक रंगमंच की धारा शुरू की जाए। तो उसके दौरान हमने वहां पर सबसे पहले नाटक शुरू किए, और पहला नाटक हमने शुरू किया एक अनिल बर्वे नाम के एक बहुत बड़े मराठी के एक लेखक थे, और उस जमाने में 1980 में उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक था थैंक यू मिस्टर ग्लाड।
1: ओके,
0: बाद में उस नाटक के ऊपर फिल्में भी बनी, कालिया और दूसरी फिल्में, वो कमाल का नाटक था। उस नाटक को हमने अपने शहर में मंच एक और उस नाटक को, वो नाटक इतना सफल रहा, मेरे ख्याल से 1-2 हजार लोगों ने उस नाटक को देखा और बहुत बहुत पसंद किया
1: जी।
0: तो वो एक बुनियाद था नए रंगमंच की मेरे लिए भी, और मैंने उसको नाटक को निर्देशित भी किया था, हालांकि उस समय मैं बहुत युवा था, मन में बहुत डर भी था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वो नाटक सफल रहा क्योंकि हमने उसको तैयारी करने में बहुत मेहनत की थी।
1: तो मेहनत आपकी रंग लाई
0: जी,
1: और
0: जी।
1: ये जो मेहनत का दौर था ये शुरू हो गया आपकी जिंदगी में और जिंदगी का हिस्सा बन गया, और यही मेहनत आज आपको इस सक्सेसफुल यूं कहें कि एक मंच पर उसने खड़ा कर दिया है।
0: सुषमा जी, मैं एक मेहनत के ऊपर ही एक बड़ी जोरदार बात जो मेरे जीवन का अनुभव है ना, वो अपने नए मित्रों को, सुनने वाले मित्रों को जो हमारा रेडियो सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं
1: जी।
0: एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन कमाल की बात है, वो ये है कि मेहनत गुमनामी में कीजिए, मेहनत गुमनामी में कीजिए, सफलता आपका शोर मचाएगी।
1: क्या बात है, बिल्कुल।
0: अगर आप परिश्रम से जुड़े हुए हैं किसी भी कला से, कोई सी भी कला हो, मैं अपने नए साथियों को यही कहता हूं कि आप उसको मन से, दिल से प्रेम कीजिए उस कला को, और आप ये देखिए पूरा पूरा एक इतिहास है कला क्षेत्र में, इतिहास है राजनीति में, साहित्य में, कि जो लोग मन से जुड़े वो सफल हुए।
1: तो नाट्य लेखन की यात्रा की बात हमने की जिसकी शुरुआत अलवर शहर से हुई और फिर उसकी धूम जयपुर में मची और अब तो पूरे राजस्थान में इसकी धूम है, राइट। कौन सा वो वर्ष था जब आपका पदार्पण हुआ जयपुर में?
0: मैं जयपुर में आया था 1987 में, काफी बरस हो गए, अब तो कोई पूछता भी है कि कहाँ के रहने वाले हो तो मुंह से निकलता है जयपुर का रहने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ फिर बस जाता है आदमी का वही घर हो जाता है। हम वैसे तो हम राजस्थान के देश के, अब मैं तो सच्ची बात बताता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो पूरी जो यूनिवर्स है उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, क्योंकि कलाकार के लिए तो अब यही है, ये सारी देश दुनिया सब अपनी है, यही हमारी संस्कृति में भी यही कहा गया है कि अखिल विश्व हमारा घर है।
1: एक हास्य व्यंगकार के रूप में आपने प्रसिद्धि हासिल की है, खास तौर पे कहूँ कि ये आपका जॉनर रहा है जिस पर आप लिखते जी, भी हैं और बहुत से नाटक आप मंचित करते हैं। इसके अलावा आपने पीपल्स मीडिया एंड थिएटर की शुरुआत की और उसके आप प्रेसिडेंट रहे हैं, ये ड्रामा ग्रुप ने शुरुआत की है इसकी, राजस्थान पत्रिका में लगातार 20 साल तक व्यंगात्मक बातों से परिपूर्ण कॉलम लिखना और सबको हर दिन एक एक सोच दे देना कि हाँ इस पर सोचना बहुत जरूरी है एक आम जन को, बात करामात के नाम से बहुत प्रसिद्ध रहा, इतनी चीजों के लिए ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता है?
0: देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि लेखन हो या साहित्य हो जो सारा उपजता है, और एक एक बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताता हूँ वो सृजन प्रक्रिया के बारे में है। मैं घासी गंगी की भी बात करूंगा लेकिन पहले सृजन प्रक्रिया की बात करूं। आप किसी भी लेखक से ये पूछिएगा कि आप लिखते कैसे हैं, मेरे ख्याल से इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, आप वो उत्तर दे ही नहीं पाएगा। और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कोई मुझसे पूछता है कि आपने इतना इतने बरस तक 20 बरस तक हजारों लिखे हैं, प्रतिदिन लिखता था, कैसे लिखता था? मैं अब अपने लिखे हुओं को मैं स्वयं खुद पढ़ता हूं तो मुझको लगता है कि भगवान क्या ये मैंने लिखा है। मैं यकीनन बात बता रहा हूं इसमें। अच्छा एक एक, एक इसको इस बात को ही मैं दूसरी तरह से भी जोड़ के बताता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ ये कहा गया है और ये धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि हमारे यहाँ जैसे वेद हैं, वो कहा गया है कि ये वेद ईश्वरीय रचना है। इसी तरह कुरान के बारे में भी यही कहा गया है कि वो ईश्वरीय रचना है, ईश्वर ने रचा है उनको, ये ऊपर से आई है नीचे। वेदों के बारे में भी यही कहा गया है और यही बात बाइबल के बारे में भी कही गई है, वो ईश्वर के द्वारा रची गई रचना है जो आई है। मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं उसको उस तरह नहीं ले रहा जो एक धार्मिक परंपरावादी लोग रहते हैं लोग लेते हैं। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि ये मनुष्यों के द्वारा रची गई है, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं कि उस मनुष्य को भी बिल्कुल पता नहीं होता जब वो अपना रचना लिखता है कि वो उसने कैसे लिख दी। एक बहुत बड़ी बात है, और आप चाहे इसमें गालिब को पढ़ लीजिए, कबीर को पढ़ लीजिए, वो सब तुलसी को पढ़ लीजिए, वो अपनी रचना प्रक्रिया में ये बात जरूर कहते हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि ये हमने कैसे लिख दी। हालांकि लोग उसको कहते हैं कि ये इन्होंने विनम्रता वश कही है, लेकिन वो बात विनम्रता वश नहीं कही है, वो बात बिल्कुल सच है
1: जी।
0: इसको अंधविश्वास के रूप में न ले हम ये मेरा कहने का मतलब है कि आदमी के जीवन के अनुभवों का उसके जो निचोड़ होता है, जो वो सारी जिंदगी चीजों को देखता है, जो उसके मस्तिष्क में जाके पक जाती हैं और वो उस निकलती हैं
1: शब्दों के माध्यम से, फिर वो
0: शब्दों के माध्यम
1: निकलती हैं, बिल्कुल
0: वो निकलती
1: और... हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि हर दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है या हम कुछ ऐसा लोगों में देखते हैं, तो आपकी जो एक किसी को देखने की या किसी प्रक्रिया को समझने की शक्ति आपके अंदर होती है तभी आप उसे कर पाते हैं, वैसा कर पाते हैं
0: निश्चित रूप से। चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ सुषमा। आप वाणी से जुड़ी हुई है, बोलने के माध्यम से जुड़ी हुई है, आप क्या अनेकों बार ऐसा नहीं होता है कि आप माइक्रोफोन के सामने हैं और उस समय आप बोल रही हैं और आपको अपने आप शब्द आपके सामने आते जा रहे हैं, अपने आप वाक्यों की बुनावट होती जा रही है, ये कैसे होता है?
1: हाँ वो
0: बिल्कुल होता है
1: सही कह रहे हैं आप, और हमारे भीतर से वो बात आती है, लेकिन वो जो भीतर बात समाहित हुई है वो शायद हमारे अनुभवों का ही सारा का सारा जो एक निचोड़ है वो हमारे भीतर होता है और वही हम सब तक पहुंचाते हैं। हमें जो एक्चुअल लाइफ में अनुभव हुए होते हैं हमारे आसपास के व्यक्तियों की वजह से या हमारे आसपास की परिस्थितियों की वजह से वही बाहर आते हैं, वो आपका मानना बिल्कुल सही है।
0: अब देखिए अब हास्य व्यंग्य पे आते हैं अपन, हास्य में या व्यंग्य में प्रतिदिन मुझको लिखना है, एक निश्चित समय पे लिखना है, अखबार छपेगा, चाहे मेरी तबीयत खराब है, चाहे मेरे घर में कोई खुशी है, चाहे मेरे बेटे का ब्याह है, चाहे ये है कि मेरी नानी का स्वर्गवास हो गया और मुझको, लेकिन मुझको लिखना है
1: जी,
0: क्योंकि अखबार आप इस बात का इंतजार नहीं करेगा तो आपको तो लिखना ही है। अब उस सारी प्रक्रिया के अंदर प्रतिदिन लगो, मुझको इस बात का गर्व है कि 20 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन मैंने वो ना लिखा हो
1: जी।
0: तो ऐसा थोड़ी हुआ कि मेरी जिंदगी में ये सारे जो होते रहते हैं ये नहीं हुए, लेकिन लेकिन एक नियमितता कि लिखना है तो वो लिखा। और अब बहुत सारे युवा मित्र पूछते हैं कि आपके आइडिया कहाँ से आते हैं
1: जी।
0: देखिए ये भी मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं अपने दोस्तों से और विशेषकर आपके माध्यम से, अपने FM के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने दिमाग को, अपनी इंद्रियों को खुला रखेंगे, आंख को और कानों को खुला रखेंगे, तो आपको आइडिये कहीं से भी मिल जाएंगे। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप बस में बैठे हुए हैं, आप कॉफी हाउस में कॉफी पी रहे हैं, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आपके घर में कोई कोई बुजुर्ग महिला आई है, वो अपने अनुभव बता रही है, आइडिया वहां से मिल जाएंगे आपको। आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं और वो ही सर्वश्रेष्ठ होंगे और आप उनको फिर उस, अब ये क्षमता तो आप में होनी चाहिए कि उनको आप
1: ग्राह्य शक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल कुछ ऐसे किस्से कहानियां कभी जीवन में जरूर हो जाते हैं और लेखक तो उन्हें कलमबद्ध कर देता है, मतलब ऐसे वाक्य जो आपके नजरिए को ही बदल डालते हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ आपकी जिंदगी में भी जो जिन्होंने आप पर असर डाला और बहुत बार आपकी जो एक सोच चल रही थी वो बदल गई, डायरेक्शन बदल गया?
0: यहाँ पे मुझको कबीर याद आ रहे हैं और कबीर ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है और वो कहा है कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुभास। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी इत्र फरोश के साथ बैठे हुए ही हैं, बेशक वो आपको इत्र देगा नहीं, लेकिन उसके साथ बैठने से उसकी जो खुशबू है इत्र की, उसके इत्र की खुशबू वो तो आपके इर्द गिर्द मन रहेगी, वो तो आपको उल्लासित करेगी, आनंदित करेगी।
1: बिल्कुल,
0: संगत का बड़ा महत्व है सुषमा जी, आप किस संगत में बैठते हैं। अगर आप विद्वान लोगों की संगत में, विद्वानों का देखिए यहाँ विद्वानों का मतलब ये नहीं कि कोई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ
1: बैठे,
0: नहीं नहीं नहीं, विद्वानों से मतलब एक जीवन के अनुभवों से पके हुए, जैसे बात करामात में मैं सबसे ज्यादा जो बातें लिखता था वो मेरी नानी की लिखता था, जो मेरी नानी ने बचपन में मुझको बातें करती थी, उसकी हरकतें कैसे बात करती थी। मैं सबसे ज्यादा बातें, एक मेरा दोस्त था राधे, वो नहीं रहा, वो बिल्कुल लेमैन था, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, और उस राधे के साथ जो मैं बीतता था, वो बैठता था, उसकी बातें मैं राधे की बातें लिखता था, तो वो लोगों को बड़ी पसंद आती थी, वो कहती वाह वाह यार आप तो कमाल करते हो। तो ये मेरा कहने का मतलब है जी।
1: जी बिल्कुल, रंगमंच आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, या यूं कहूं कि मतलब जो आपकी लाइफ सेंटर्ड रही है वो रंगमंच को लेकर रही है, राइट?
0: जी,
1: रंगमंच को आपने बहुत महत्व दिया है और इसी क्षेत्र में आप अब बहुत सारे बच्चों को भी आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं अपने वर्कशॉप्स के द्वारा। ये जो रंगमंच होता है, इसका हमारे जीवन में किस तरह महत्व होता है, किस तरह आप जीवन यात्रा को जोड़ते हैं एक रंगमंच से?
0: तो पुनः नई पीढ़ी को एक दिलचस्प छोटी सी कुछ कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो उनको बहुत याद रखना चाहिए। एक छोटे से चार लाइनें हैं, किसी शायर ने लिखा है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, तुम भी संभाले हो गिरती हुई दीवारों को अब वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है।
1: बहुत खूब,
0: ये बुजुर्गों की निशानी को संभालना, यहां बुजुर्गों की निशानी का मतलब ये नहीं कि हम उनके घर को संभालें, हम वो जो रिवायत है, जो संस्कार है हमारी, जो हमारे पीढ़ियों से हमारी संस्कृति में है, इन संस्कारों को संभालना। और थिएटर में भी यही है, देखिए थिएटर हमारे यहाँ सबसे, सारे विश्व में सबसे पुरानी जो परंपराएं हैं वो हमारे देश में मिलती है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, जो हजारों बरस पहले की है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनान के अंदर भी सैकड़ों साल पुराना रंग, हजारों बरस पुराना रंगमंच है, लेकिन हमारी परंपरा यूनान के जो रंगमंच है, यूनानी रंगमंच से भी पहले की है। और पश्चिम में तो स्टैनलिवस्की वगैरह वो तो 18वीं 19वीं सदी के लोग हैं वो तो
1: जी,
0: बाकी जो कुछ है। तो इस परंपरा को जो हमारे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, उस परंपरा के अनुसार अपना नाटक करना। और मेरा उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी को मैं यही सिखाता हूं। बहुत छोटी छोटी बातें उन्होंने, और उन्होंने तो नाट्यशास्त्र पढ़ने में तो आदमी की सारी जिंदगी गुजर जाए तो भी वो उसको नहीं समझ सकता, इतनी सारी बातें उन्होंने इतने बारीक ढंग से लिखी गई हैं। वो पता नहीं भरत मुनि एक थे या कई पीढ़ियों ने वो लिखा है, इस बात की दूसरी बात है। नई पीढ़ी को मैं ये समझाना चाहता हूं कि नाटक जो एक ऐसी कला है जिसमें सारी कलाएं समाहित हैं। देखिए नाटक में संवाद अदायगी बोलने की कला है, नृत्य है, अंग संचालन है, नाट्य तो है ही उसके अंदर, इसके अंदर संगीत है, नाट्य संगीत, मनोविज्ञान है, सामूहिकता है। किसते नाटक कोई एक आदमी नहीं कर सकता, नाटक के लिए बड़े एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है
1: जी।
0: तो वो एक समूह की, और ये सारी की सारी चीजें जो मैनेजमेंट है, जिसको सिखाया जाता है, जिसको लाखों 10 लाख रुपए फीस होती है अच्छे कॉलेज में एमबीए की फीस, ये कि ये बातें वहां पे भी सिखाई जाती हैं। वो ठीक है, वो एक व्यवस्थित रूप से उनकी एक भाषा है, उनकी एक थ्योरी है, उनका एक सब कुछ है, लेकिन नाटक में भी वही चीजें सिखाई जाती हैं। नाटक में अनौपचारिक ढंग से सिखाई जाती हैं, नाटक में उसको कलात्मक ढंग से सिखाई जाती है। और यही कारण है कि पिछले दिनों सुषमा जी अलग अलग डिसिप्लिन के जो बच्चे मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं वो बच्चे, जो बच्चे MBBS कर चुके हैं वो बच्चे, ऐसे बच्चे जो PhD कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट बन गए वो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे कि जो अपना भविष्य ही इस कला माध्यम में तलाशते हैं कि हमको तो मुंबई जाना है और अभिनेता बनना है
1: जी।
0: तो ऐसे सैकड़ों बच्चे मेरे जीवन में, सैकड़ों तो हो सकता है कि 1000 के आसपास संख्या हो गई हो, क्योंकि हर बरस 50-60-100 बच्चे आ जाते हैं, तो हजारों बच्चे मेरी जिंदगी में आए। और वो देखिए, मैं एक बात और बताता हूं सुषमा जी, कि कोई जरूरत नहीं है कि आप उस कला को अपनी जीविका का भी साधन बनाए, कोई सी भी कला हो, चाहे संगीत की कला है। आप, मैं आपकी बात करता हूं, जितना मैं आपके बारे में जानता हूं, आपने भी शुरुआत संगीत से की थी ना
1: जी,
0: गायिका थी आप, प्रसिद्ध गायिका रही थी, आपने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी जीता है
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन वो सारी चीजें मनुष्य के काम आती हैं और उसके जीवन को एक अच्छा बनाने में, एक जिसको कहते हैं प्रफुल्लित करने के अंदर ये सारी कलाएं काम आती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप नाटक से जुड़े, आप बोलने से जुड़िए, आप पेंटिंग से जुड़िए, आप नृत्य से जुड़िए, आधुनिक नृत्य कीजिए। कोई वो ऐसा नहीं है कि आप भरतनाट्यम या कथक या कथकली करेंगे, आप जो आधुनिक नृत्य है उसकी जो कोरियोग्राफी आजकल करते हैं उससे जुड़िए।
1: यानी आर्ट को अपनी लाइफ में एक वो इम्पोर्टेंट जगह देनी बहुत जरूरी है।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, जी जी जी हाँ।
1: और जिंदगी के जो चैलेंजेस होते हैं, मुझे लगता है एक आर्टिस्ट उन्हें बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है, ये भी हमें रंगमंच बहुत अच्छे से बखूबी सिखा देता है। अब बात करते हैं कुछ मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स की। आपके बहुत से प्रोजेक्ट्स रहे हैं, रेडियो में आपने बहुत कमाल का काम किया है, रंगमंच तो किया ही है, तो कुछ ऐसे पल जब आपको वाकई गर्व हुआ हो और अपनी टीम पर गर्व हुआ हो, अपने जो भी आपका कार्य रहा उस पर गर्व हुआ हो, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो सभी को बताना चाहेंगे।
0: जी जी, मैं दो तीन बातें बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा युवा पीढ़ी के लिए और नौजवानों के लिए, किसी के भी लिए भी, एक दो बातें मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक है कि खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त में कुछ अपना इख्तियार भी रख। कुछ काम अपने लिए भी छोड़ मेरे प्यारे दोस्त। भगवान के भरोसे मत रह, जो करेगा भाग्य करेगा, जो होगा ईश्वर चाहेगा वो होगा, वो तो होता ही है, चलो ठीक है मान लिया उसको भी, लेकिन जब आप खुद उसमें नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूं, मैंने एक नाटक किया जिस नाटक की अवधि थी 10 घंटे, रामचरित नाट्य।
1: बिल्कुल
0: 10 घंटे, ये आमतौर से हम 1-1.5 घंटे का नाटक करते हैं, उस नाटक को हमको तैयार करने में लगभग 3 महीने लगते हैं, 90 दिन में एक नाटक तैयार होता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया है नाटक की तैयार करने की, क्योंकि एक सामूहिक विधा है। 10 घंटे के नाटक को तैयार करने में, उसकी तैयार करने में मैंने कम से कम 8 महीने तो उसकी स्क्रिप्ट पे काम किया। दुनिया भर की किताबें पढ़ी, दुनिया भर की, मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, रामचरित मानस पढ़ी, राधेश्याम जी की रामायण पढ़ी, मेहोजी गोदारा की रामायण पढ़ी, एक दक्षिण की एक बहुत बड़ी संत है उनकी उनकी रामायण पढ़ी, ऐसे कम से कम 10 रामायणों का पाठ किया, उनमें से प्रसंग निकाले, उनमें से निकाल के और फिर एक स्क्रिप्ट तैयार की
1: जी।
0: परंपरागत रामायण जो चलती है उसकी स्क्रिप्ट मैं निकलवा के लाया अपने दोस्तों से और उनको मिला के एक नाटक, 10 घंटे का नाटक हुआ जिसमें नृत्य भी था, जिसमें संगीत भी था, और वो हमने जवाहर कला केंद्र में किया, जवाहर कला केंद्र के साथ मिलके, और लगातार 2 वर्षों से कर रहे हैं,
1: हजारों लोग
0: जी
1: जी
0: 5 घंटे जी।
1: आपका खेजड़ी की बेटी मुझे याद आ रहा है, जिसके मतलब पता नहीं अनंत शोज आपने किए हैं जगह जगह पर।
0: खेजड़ी की बेटी की भी यही प्रक्रिया रही। खेजड़ी की बेटी जब नाटक तैयार किया, इसका भी मैं दिलचस्प बताता हूँ कि मेरे मित्र थे श्री डीएन शैली साहब, वो नहीं रहे, मरहूम डीएन शैली साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक ये घटना है कि राजस्थान में 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान किया था। ये बात मैं बताता हूं आपको, 1990 के आसपास की बात है, 90-91 की, और ये नाटक तुमको लिखना है, क्योंकि मैं शैली साहब के लिए बच्चों के नाटक लिखता था, वो मुझसे लिखवाते थे और वो मंचित करते थे। उन्होंने कहा ये नाटक लिख। एक आईसी श्रीवास्तव साहब एक बहुत पुराने आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, शिक्षा कर्मी बोर्ड के उन दिनों अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर नाटक लिखवाओ। वो नाटक का मैंने पढ़ा तो उसके बारे में इधर उधर सुना, पता था कि 363 लोगों ने बलिदान किया है, तो मैंने एक छोटी सी सिनॉप्सिस बनाई और डीएन शैली साहब को दे दी। मैंने कहा यार ये घटना है। डीएन शैली साहब ने उसको पढ़ा, फिर व्यंग से मुस्कुरा के कहा कि यार ये तो कोई बात नहीं है, ये तो क्या क्या है, ये तो तुमने कुछ मेहनत ही नहीं की, इधर उधर से किया। ये बात मुझको बहुत चुभी मन में।
1: अच्छा,
0: मैंने कहा यार ये तो मतलब जो चालू, जिसको कहते हैं ना चालू माल, अशोक रही, ये तो बहुत तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैंने शोध करना शुरू किया। प्रोफेसर हीरा लाल जी माहेश्वरी राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय और जाम्बोजी के ऊपर पीएचडी की थी, उनके 2 वॉल्यूम थे, कम से कम 1,000 पृष्ठ
1: जी
0: किताबें थी, बड़ी बड़ी, वो किताबें मैं लाया। फिर मैंने ये सोचा, ये लगा कि उस समय जो मारवाड़ था, ये घटना जोधपुर के में खेजड़ली में हुई थी ना, तो मारवाड़ का इतिहास क्या रहा होगा, उस समय देश की राजनीति क्या कर रही होगी। तो विश्वेश्वर नाथ रेव नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं मारवाड़ के, उनकी पुस्तकें हैं, वही 1000 पृष्ठ मारवाड़ का इतिहास, वो मेरे मित्र से लाया। और तो इसके अलावा मेरे मित्र श्री तुलसीराम जी माजू जो बिश्नोई हैं, हेतराम जी बिश्नोई, कर्नल बिश्नोई, ऐसे कई बिश्नोई मित्रों के घर गया, उनसे पूछा कि क्या आपकी वैल्यूज हैं, क्या आप पहनते हैं, क्या क्या ये घटना है, कौन लोग थे जो 363 लोग जो मर गए। तो उन्होंने मुझको एक सूची दी कि ये 363 लोग मरे थे
1: जी।
0: और उन सबको मिला के उनका गहन अध्ययन करके मैंने एक नाटक लिखा, और वो नाटक की अवधि मात्र 1 घंटा 20 मिनट
1: जी।
0: लेकिन उस 1 घंटे 20 मिनट को नाटक को तैयार करने में मुझे तो महीनों लगे और हजारों प्रश्न पढ़ने पड़े, तो वो नाटक तैयार हुआ।
1: लेकिन आप वो मेहनत रंग लाई,
0: इतनी रंग लाई कि पूरे देश में वो जब जहां जहां मैंने नाटक खेला, 20,000 लोगों के बीच में खेला तो उनको उन्होंने पसंद किया, इंडिया इंटरनेशनल में खेला 400 लोगों के बीच में जो देश के बिल्कुल सुपर इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्होंने वो पसंद किया, मंत्रियों के बीच में खेला राज्यपालों ने पसंद किया, सामान्य जन में खेला उन्होंने पसंद किया। उसका कारण ये था कि एक तो वो घटना, दूसरा उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी जबरदस्त हो गई, और सुषमा जी आप यकीन नहीं करेंगे उसके बाद में बिश्नोई संप्रदाय के तो लोग ही मुझको आके बताने लगे कि ये घटना ऐसे हुई थी, जबकि वो पूरी तरह घटनाक्रम मैंने अपने हिसाब से नाटकीय तरीके से बनाया था, लेकिन वो इतना विश्वसनीय हो गया। ये कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूं ना, वो अध्ययन के साथ उसमें अपनी कल्पनाशीलता जब तक नहीं करेंगे, एक लेखक का यही सृजन है। अब कोई मुझसे पूछता है कि नाटक तुमने कैसे लिखा, तो मैं यही बताता हूं, बाकी वो ये है कि ये तो जाम्बो जी ने, गुरु जम्बेश्वर ने और अमृता देवी ने लिखवा लिया, वरना मैं कौन होता हूं। ये नाटक तो उन्होंने लिख दिया जो 300 बरस पहले ये बलिदान कर गए, एक्चुअली नाटक तो ये उन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल, लेकिन आपकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी चीजों का समावेश होता है जब एक कृति को तैयार किया जाता है।
0: इसमें कोई दो राय नहीं है सुषमा जी।
1: एक नाटककार के रूप में आप आज जो अपना आसपास का दौर देखते हैं, लोगों को देखते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स से आपका काफी आप रूबरू होते हैं, है ना, अपने आर्ट को उन तक पहुंचाते हैं, तो क्या सोचते हैं आप, क्या बदलना चाहते हैं आज के वक्त में अगर आप नजर डालें तो?
0: नहीं देखिए, ये भी एक बात है, कोई भी लेखक अगर ये सोच के करेगा कि मैं पूरे समाज को बदल दूंगा तो ये उसका रवैया ठीक नहीं, इसमें उसमें उसका अहंकार बोलता है
1: जी।
0: तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी उस समय कतई उनका मंतव्य नहीं था कि मैं कोई समाज को सुधारूंगा, वो उन्होंने एक भाव से लिखी थी। कबीर ने जो दोहे लिखे वो अपने मन के भाव से लिखे, मीरा के जो पद हैं, मीरा का जो प्रेम का है, उन्होंने, मीरा ने ये थोड़ी सोचा कि मैं इस तरह समाज में प्रेम का प्रसार करूंगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जिस तरह से होता हूं, लेखक को ईमानदारी से अपने काल को देखते कि मेरे समय में क्या चल रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जब मैंने खेजड़ी की बेटी नाटक लिखा तो उस समय जो उसका राजनीतिक पोर्शन है वो लिखा, तो उस समय राजनीति में क्या था कि 2 साल में कम से कम 6-7 बादशाह वहां बदल गए थे दिल्ली में, मोहम्मद अजम और जाफर शियर और जरदार शाह, और 6-6 महीने एक एक साल रह के। और संयोग की बात है जब मेरा यह नाटक लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश में भी ये हो रहा था, पहले चंद्रशेखर, वो राजीव गांधी थे, फिर चंद्रशेखर बने, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, फिर इंदिरा कुमार गुजराम, यानी के साल छह महीने में 5 प्रधानमंत्री हमारे देश में भी बदल गए।
1: अच्छा,
0: अब आप ये देखिए, ये कोइंसिडेंट है क्या है कि, लेकिन कैसे वो 300 बरस पहले की राजनीति और उस समय की राजनीति बिल्कुल यूं की यूं मिल रही थी। लोगों ने उस समय तो एकदम जोड़ा कि अरे ये तो हो रहा है, वहां पे बादशाह बदल रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। आपको ध्यान होगा उस काल में हमारे देश में कितनी जल्दी प्रधानमंत्री बदले थे।
1: जी जी जी,
0: कुछ घटनाएं कुछ होती है। अच्छा, आज भी आप आज कोई नया लेखक है वो कोई लिखना चाहे, मैं कहता हूँ उस समय देखिए कैसा हमारे समाज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, विशेषकर महिलाओं को लेके क्या प्रॉब्लम, कितने मतलब जिसको कहते हैं कि हम क्या, मेरे शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कितने दिखावटीपन हमारे समाज में आ गया है। जिंदगी में सारे दौरों में आ गए, कितने क्या हम इतने सहज हैं जैसे हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी हुआ करते थे। आप देखिए, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ब्याह शादी हमारे घरों में, अब मैं देश के सेठों की बात नहीं कर रहा, मैं तो हमारे घरों की बात कर रहा हूँ, हमारे घरों में जो आजकल शादियां होती हैं, अरे बाप रे कितना दिखावटीपन आ गया उसमें। जबकि हमारे जमाने में 50 बरस पहले जो शादियां होती थी, कैसे सहजता से शादियां होती थी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये लगती हैं, ठीक है पैसा आया है, कैसे खाने पीने की चीजें बदल रही हैं, कैसे संस्कार, आप देखिए समाचार पत्रों में जब हम खबरें पढ़ते हैं और विशेषकर बच्चियों को लेकर जो खबरें आती हैं, दिल नहीं टहल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: आप एक लेखक का ये अपने आप दायित्व बनता है और अपने आप उसको वो लिखता है और लिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जा रहा, लिख रहे हैं। ये जो सामाजिक ढोंग है, राजनीतिक ढोंग है, अभी मैंने नाटक किया जो मुंबई के लेखक अनुरोध शर्मा उनका लिखा हुआ वनफूल की पत्ती गुल, पूरी राजनीति का ऐसा वो है कि एक राजनेता कैसी कैसी हरकतें कर रहा है उसमें और उसकी आत्मा बदल गई, वो बड़ा एक दिलचस्प नाटक है, वो अभी पिछले दिनों ही शो किए थे उसके।
1: जी,
0: कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये चीजें रचनाकार के की रचनाओं में अपने आप आते हैं, उनको हास्य से प्रकट कीजिए, आप व्यंग के साथ प्रकट कीजिए, लोग आनंद लेते हैं, लेकिन उस चीज को वो दिल पे लगती है उनके, ऐसा नहीं है वो सोचते हैं कि यार ये गलत है तो गलत है। जी सुषमा जी,
1: अशोक राही जी ने वैसे तो बहुत कुछ अभी तक अपनी जीवन यात्रा में पाया है, लेकिन ऐसा होता है कि बस जीते जीते हमारे जो सपने हैं वो बदलते रहते हैं, तो ऐसा कोई सपना जो अभी भी बाकी है आप देखते हैं और उसे यथार्थ का स्वरूप देना चाहते हैं?
0: मुझे गालिब याद दिला दिया, गालिब ये लिख के गए हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
1: हर ख्वाहिश पे दम निकले,
0: बहुत निकले मेरे अरमाफ लेकिन फिर भी कम निकले।
1: तो कुछ ना कुछ तो छूट जाता है,
0: निश्चित रूप से छूटता है। एक आदमी अपने अपने जीवन में क्या कर सकता है, एक कितना लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, वो हमारी परंपरा में, हमारे देश की परंपरा में ही, हमारे यहाँ पे कोई रचना, महान रचना गुरु शुरू करता था लिखना और गुरु अपने पूरे जीवन में लिखता रहता था और उसके बाद में उसका जीवन कम पड़ जाता था तो उसके शिष्य उसको लिखते थे,
1: पूरा करते थे। जी,
0: पूरा करते थे। और मजे की बात कि वो अपना नाम भी नहीं देते थे उसमें, शिष्य नाम गुरु का ही चलता था। महाभारत जैसी महान रचनाएं जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, नाट्य शास्त्र जैसी रचनाएं, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है।
1: जी,
0: ये बड़ी लंबी परंपरा है, ये परंपरागत तरीके से लिखी हुई चीजें हैं, ये तय है। लेकिन नाम वेद व्यास जी का ही है और बाकी लोग पूछते भी नहीं है और कहते भी नहीं है और शिष्य भी नहीं कहते थे। हमारे देखिए आज भी लोक के अंदर ये परंपरा चलती है, जैसे एक भगत नाम के एक मान लो लेखक हैं जो लोक गीत लिखते हैं, तो उनके जो शिष्य है ना वो भी भगत नाम से लिखेंगे। और इस परंपरा को कहते हैं भोग लगाना
1: जी।
0: जैसे अपने आते हैं ना शब्द आते हैं कि बीच में गजल के अंत में शायर का नाम आता है, ऐसे वो अपने गुरु का नाम ही उस रचना के अंत में लिखते हैं
1: जी।
0: कबीर के नाम से ऐसी हजारों रचनाएं समाज में घूम रही हैं जिनमें कबीर कबीरा कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर ने लिखी है लेकिन कहत कबीर सुनो, अगर मान लो उनका कोई अनुयायी है तो वो भी यही लिखेगा कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये ऐसा डेडिकेशन, ऐसी ऐसा समर्पण, ऐसी परंपरा, ये हमारी हमारी परंपरा में मिलती है, हमारे देश की साहित्यिक परंपरा में जी।
1: बिल्कुल, हम आपकी जो डेडिकेशन है उसको भी सलाम करते हैं और चाहेंगे कि जो भी यंगस्टर्स हैं जो आप ही के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं, ऐसा सपना देखते हैं, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे और क्या कुछ बातें हैं जो उनके साथ, क्योंकि आप शेयर करते ही रहते हैं अपनी वर्कशॉप्स के जरिए, उन नए नए बच्चों को बहुत सारा इंस्पिरेशन देते रहते हैं, तो आज क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, वो सुन लीजिए कि इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देंगी, इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देंगी, रात जंगल में कोई शम्मा जलाने से राह। आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। बुद्ध कह के गए थे, बुद्ध जब मरने लगे तो उनका जो शिष्य था, जो उनका भाई भी था चचेरा भाई आनंद, 40 बरस तक उनके साथ रात था, वो रोने लगा और कहने लगे कि तथागत आप जा रहे हैं हमारा क्या होगा। तो तथागत ने कहा कि अप दीपो भवे, अपने दीपक खुद बनो
1: जी,
0: नई पीढ़ी को अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो परंपरा है, अपने गुरु हैं, जो अच्छा लिखने वाले हैं, जो अपने बुजुर्ग हैं, उनसे नहीं सीख सकते, सीखिए उनसे, वो तो सबसे बड़े आपके साथी हैं, लेकिन अंत में आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा। और मैं इस बात को उस तरह ना लिया जाए, खुद शिताई में ना लिया जाए, लेकिन मेरा तो नाटक में कोई गुरु ही नहीं रहा कि जिससे मैंने सीखा हो, लेकिन यूं देखते हैं तो हजारों दत्तात्रेय की तरह हर वो साथी, हर वो गलती मेरी गुरु थी, हर नया साथी मेरा गुरु होता है जो एक नई तरीके से एक्टिंग करता है, और वो बात ही बातों में एक ऐसी बात कह जाता है कि जो दिमाग के एकदम खोल देती है, प्रकाश लग जाता, करे ये बच्चा तो ऐसी बात कर रहा है। तो सीखने का जो जज्बा है ये सबसे बड़ी बात है सुषमा जी।
1: सीखने की प्रक्रिया अनंत चलनी चाहिए, जीवन पर्यंत चलनी चाहिए, यह शुक्राही जी का मानना है और उनके साथ भी यही चल रहा है, तो हम यही कहेंगे कि आपका जो ये हसीन सफर है वो यूं ही चलता रहे, बहुत सारे माइलस्टोन्स अभी आपने क्रिएट किए हैं लेकिन और भी करें जिनको देखकर हम इंस्पायर हो, नए बच्चे इंस्पायर हो और बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ समझें।
0: बस सबसे बड़ी बात है मित्र अच्छे होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, आप सरीखे व्यास जी जैसे ऐसे मित्र हों तो फिर तो कहना ही क्या, आदमी अपने आप आगे बढ़ेगा।
1: तो अशोक राय जी, आपका हम दिल की बातें जो आपने हम सभी के बीच रखी हैं आज, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।
0: मैं भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से मैंने भी बड़े खुले दिल से अपनी जो भी मेरी समझ है जीवन की वो आपके सामने रखी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हरिशंकर व्यास जी का और साथ ही ओपी शर्मा जी का। थैंक यू सो मच।
2: आप सुन रहे थे प्रोग्राम बातें दिल की, और दिल की बातें कर रही थी अशोक राही के साथ सुषमा। टेक्निकल निर्देशन रहा ओपी शर्मा का। और अब डॉक्टर गाधा के सुरीले गीतों की बात करते हैं।

संग था, खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा सलिपियो बोर रंग घोर कर बोर बनवारी। मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी।

गीत सुहाने आप सुन रहे थे डॉक्टर गाथा महंती की आवाज में, आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आज का ये सुहाना सुरीला सफर यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। सभी का मूड्स ऑफ रफी प्रोग्राम में मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रफी जी ने हर तरह के गाने गाए हैं, चलिए उनके कुछ प्यार भरे रोमांटिक गीत सुनते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1967 में रिलीज्ड फिल्म शागिद से, जिसमें जॉय मुखर्जी और सायरा बानू थी। इस फिल्म का सदाबहार म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, जो आज तक तरोताजा है। इसी फिल्म का एक सदाबहार रोमांटिक गीत सुनते हैं जिनी और डॉक्टर शरद की आवाज में।

वाह क्या बेहतरीन गीत पेश किया। अगला गाना सुनते हैं 1968 में रिलीज्ड फिल्म हसीना मान जाएगी से, जिसमें शशि कपूर और बबीता जी थीं। प्रकाश मेहरा जी की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म का सदाबहार म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने, जिसमें मोहम्मद रफी जी और लता जी के गाए हुए गाने बहुत फेमस हुए। ऐसा ही एक मधुर और बेहतरीन गीत सुनते हैं डॉली जी और संजय जोशी जी की आवाज़।

वाह, क्या बेहतरीन गीत पेश किया, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं 1963 में रिलीज्ड फिल्म हमराही से, जिसमें राजेंद्र कुमार और शोभा खोटे थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने, जिसमें प्लेबैक किया मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी जी जैसे सिंगर्स ने। आइए इसी फिल्म से एक डुएट सुनते हैं, श्वेता जी और संतोष खेरे जी।

0: बहुत खूब। चलिए अगला गाना सुनते हैं 1962 में बनी फिल्म दिल तेरा दीवाना से, जिसमें शमी कपूर और माला सिन्हा थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी, लता जी और आशा जी जैसे कलाकारों ने। ऐसे ही फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं प्राची और सुबोध जी की मधुर आवाज।
1: पिछली गिरा

क्या मधुर गीत पेश किया, बहुत खूब। अगला गाना सुनते हैं 1961 में बनी फिल्म जंगली से, जिसमें शम्मी कपूर और सायरा बानो थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी और लता जी ने। चलिए इसी फिल्म का एक मधुर ड्यूएट सुनते हैं, सविता जी और अमित पाठक जी की मधुर आवाज में।

वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। अगला गाना सुनते हैं 1958 में रिलीज्ड फिल्म काला पानी से, जिसमें देवानंद और मधुबाला जी थीं। इस फिल्म का सदाबहार संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी जी और आशा भोंसले जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं सचिन और प्रणीति जी के मधुर स्वरों में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, कहीं ना जाइएगा, रफी जी के मधुर गीतों का सिलसिला अभी जारी है।
1: रफी सोलफुल, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट दिया गया है मुझे। सोलफुल यानी कि रूहानी गाने, वो गाने जो दिल को छू जाएं, चाहे वो दर्द भरे गीत हों, गजल हों, चाहे रोमांटिक हों, चाहे शरारती हों। रूहानी संगीत हमारी रूह की गहराइयों में पहुंचकर हमारी रूह कभी गमगी कर देता है, कभी प्योर लव का एहसास दिलाता है, कभी एक छोटा बच्चा बनकर गुदगुदाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। कुल मिलाकर रूहानी संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी खुद को उन गीतों से जुड़ा पाते हैं। मोहम्मद रफ़ी के ऐसे ही कुछ नगमे, गीत, गज़ल पेश करूंगा आपके सामने आज मैं मनु मृदुल, इंटरनेट रेडियो जयपुर के सौजन्य से, आओ झूमे गाएं समूह की ओर से। सबसे पहले सुनते हैं एक बेहद रुमानी गीत, सूर्य रेखा जी और सैंडी की आवाज़ में, फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं, जिसमें मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने।

वाह क्या बात है सूर्य रेखा दी और सैंडी। जैसा कि मैंने कहा, रूहानी संगीत सिर्फ रूमानी गीतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेचैन दिल की निराशा का भी एहसास दिलाते हुए दिल की गहराइयों में उतर जाता है। ऐसा ही एक गीत सुनिए श्रुति और मुकेश चोपड़ा की आवाज में, जिसे फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त में मोहम्मद रफी ने गाया था।

चलिए अब सुनते हैं दिल की अभिव्यक्ति को उजागर करने वाला मोहम्मद रफी का गाया एक गीत अनिल झुमका वाला की आवाज में, फिल्म तीन देवियों से।

अगला गाना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपको अवश्य ही ऐसा लगेगा जैसे जन्नत यहीं उतर के आ गया हो। नौशाद का संगीत और मोहम्मद रफी की गायकी, साजों की आवाज, सुर लय ताल, जैसे शहद की मिठास और दिल में उमड़ता हुआ प्रेम, इससे ज्यादा क्या हो सकती है कोई प्रेम की अभिव्यक्ति। इस गीत को मोहम्मद रफी ने गाया था फिल्म मेरे महबूब में, और आपके सामने ला रहे हैं संजय हारने।

सिर्फ प्रेम की अनुभूति ही नहीं बल्कि विरह और विरह की उदासी और मोहब्बत की बेचैनी को भी रफी अपने गानों में ऐसे उतारते थे कि चाहे किसी का दिल टूटा हो या न टूटा हो, हर कोई उस गम को उनके गाए गानों में आसानी से महसूस कर ही लेता है। मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनकर लगता है कि मोहम्मद रफ़ी न सिर्फ महसूस करके गाते थे बल्कि जो सुनता है वह खुद उसमें खो जाता है। इसी को कहते हैं रूहानी आवाज़। सुनते हैं अगला गीत विमल सोनी की आवाज़ में, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म दिल एक मंदिर में गाया था।

कहते हैं सत्य कड़वा होता है, मगर यकीन मानिए मोहम्मद रफ़ी ने इस बात को झुठला दिया है। और यह हो पाया है मोहम्मद रफ़ी के सत्य को अभिव्यक्त करने के अंदाज से। यही नहीं, अगला गाना सुनकर आपको सत्य बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, बल्कि उस सत्य के आध्यात्म को सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। शाश्वत सत्य को मोहम्मद रफ़ी ने जिस गंभीरता से गाया है, उससे तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने उसे रूह से महसूस करके गाया है। मगर मुझे विश्वास है कि इस गीत को सुनने के बाद आप भी आत्मविभोर हो उठेंगे। ये गीत फिल्म चित्रलेखा से है, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है रोशन ने, जिसे आज लेकर आ रही हैं बहुत ही सुरीली और बेहद उम्दा गायिका जूही सिन्हा।

बरसात में भीगती हुई नायिका और शायर दूर से उसे निहारता हुआ, क्या ये भूलने की बात है? जिस तरह शायर ने उस माहौल का व्याख्यान किया है और जिस बखूबी से मोहम्मद रफ़ी ने उसे गाया है, लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह घूम रहा हो। यह होता है रूहानी संगीत का असर। पेश करने जा रहे हैं आपके सामने संजय गुप्ता, जम्मू से।

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ
1: बने रहिए हमारे साथ।
2: जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। जयपुर रेडियो,
3: उफ ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
4: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाए।
5: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
6: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: आपकी पहचान।
1: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार।
2: दोस्तों,
1: आज की शाम कुछ खास है क्योंकि हम आज एक ऐसे गायक के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सब सुरों के बादशाह के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, सही पहचाना, वो कोई और नहीं, हम सबके चहेते मोहम्मद रफी जी हैं। रफी जी का जन्म 1924 में अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और उनको बचपन में सब फिंकू के नाम से पुकारा करते थे। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि असमीस, कोंकणी, भोजपुरी, तेलुगु, मैथिली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली जैसी भाषाएं। और तो और, उन्होंने इंग्लिश, फारसी, अरेबिक, सिन्हला, डच, स्पैनिश जैसी भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने हर तरह के गीत भी गाए, जैसे कि भक्ति गीत, शास्त्रीय गीत, गजल, कव्वाली, देशभक्ति गीत, मस्ती भरे गीत और दर्द भरे गीत। तो फिर आज के गीतों के कारवां का आगाज करते हैं 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं से, जिसमें ऋषि कपूर जी थे। इस फिल्म को बेमिसाल संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी की धुनों ने और सुरों को लफ्जों से सजाया मजरू सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म के सारे गाने खूब धूम मचा रहे थे, पर उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला मोहम्मद रफी जी को और साथ ही साथ उसी गाने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तो फिर आइए उसी गीत को सुनते हैं मेरी और विद्या प्रकाश जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1980 की फिल्म आप ऐसे तो न थे से है, जिसमें राज बब्बर और रंजीता कौर थीं। इस फिल्म का जादू भरा संगीत दिया उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे निदा फाजली जी ने। क्यों ना इसी जादू भरे गीत को सुना जाए विद्या जी और बिंदु जी की मधुर आवाज में।

क्या खूब पेशकश की। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म एक नारी दो रूप से, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रश्मि धवन थी। इस फिल्म में मात्र 4 गाने थे और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया गणेश जी ने और बेमिसाल शब्दों से सजाया असद भोपाली जी ने। चलिए इसी फिल्म के एक बेमिसाल गीत को सुनते हैं MD त्यागी जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद से है, जिसमें प्रदीप कुमार के साथ शशिकला थी। इस फिल्म के सारे गाने खूब हिट हुए। इस फिल्म का बेहद शानदार संगीत दिया रवि जी ने और गीतों को शब्दों से पिरोया असद भोपाली जी ने। आइए इसी शानदार गीत को सुनते हैं अनिल झुमका वाला जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक शानदार पेशकश। दोस्तों चलिए एक खेल खेलते हैं, पर उसके लिए आप सबको पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जी हाँ, आंखें बंद। ये ना सोचिएगा कि मैं देख नहीं रहा, आंखें बिल्कुल बंद। अब अगर मैं आप सबको इस मौसम में कश्मीर की बर्फीली वादियों में ले चलूं तो कैसा रहेगा? चारों तरफ बर्फीली वादियां, बर्फीले पहाड़ और ये मस्त सर्द हवा। क्या कहा आपने? कोई फिल्म का नाम याद आया? सही कहा, कश्मीर की कली। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कश्मीर की बर्फीली वादियों में शूट की गई थी। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे SH बिहारी जी ने और उतना ही मस्ती भरा संगीत दिया ओपी नैयर जी ने। आइए इसी मस्ती भरे फिल्म के मस्ती भरे गीत को सुनते हैं जूही जी और सज्जाद जी की मधुर आवाज में।

कैसी लगी ये बर्फीले पहाड़ों की सैर? कश्मीर की कली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर के सभी गीतों को स्वर दिया मोहम्मद रफी जी ने और सारे के सारे गाने खूब सुपरहिट हुए। चलिए एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी और डॉक्टर आदेश जी की मधुर आवाज में।

कहिए कैसी रही ये मस्ती भरी पेशकश। चलिए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म धर्मा से, जिसमें प्राण, नवीन निश्चल और रेखा थी। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया मास्टर सोनिक और ओम प्रकाश सोनिक जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं अंजलि दत्त के और संजीव जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1967 की सुपरहिट फिल्म तीसरी मंजिल से है, जिसमें शमी कपूर के साथ आशा पारिक थी। इस फिल्म के सभी गीतों में मोहम्मद रफी जी ने शमी कपूर जी को अपनी आवाज दी और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और उन्हीं गीतों को संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1961 की फिल्म जंगली से है, जिसमें शम्मी कपूर जी के साथ सायरा बानू थी। इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते और हर एक गीत सुपरहिट हुआ। इस फिल्म के शानदार गीतों में हसरत जयपुरी जी की कलम का जादू देखते ही बनता है और उन्हीं गीतों को मस्ती भरे सुरों में सजाया शंकर जयकिशन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर तरुणा जी और रामकृष्ण जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1967 की फिल्म अदालत से है, जिसमें प्रदीप कुमार जी के साथ नरगिस थी। इस फिल्म के सारे गाने इतने मशहूर हुए कि आज तक गुनगुनाए जाते हैं, और इस फिल्म का संगीत दिया मदन मोहन जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे राजेंद्र कृष्णन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मद भरा गीत सुनते हैं श्रुति जी और संजय जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: उफ, ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
2: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा जेएमडी का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
3: जेएमडी, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं एक शाम, 100 साल एक आवाज। सुना है आज हवा भी गुनगुनाएगी, और रफी साहब की जन्म शताब्दी में हर धुन रफी साहब की याद दिलाएगी। तो चलिए रफ़ी साहब की यादों के इस गहरे समंदर में डूबते हैं और उनकी अमर आवाज़ को एक बार फिर से दिल से महसूस करने के लिए बुलाते हैं जयपुर रेडियो में पुणे से आज के कलाकार। एक आवाज़ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपके चहेते जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, और वो हैं सुदर्शन फाटक। वेलकम सुदर्शन जी, आपका जयपुर रेडियो में स्वागत है।
5: नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर और आज के दिन आपके सामने रफी जी के गाने पेश करना, ये मेरे लिए किसी अवार्ड रिवॉर्ड से कम नहीं है। सबसे पहले थैंक यू जयपुर रेडियो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं बोलना चाहूँ

0: ये मेरी तरफ से आज के दिन उनके 100वीं जन्मतिथि के अवसर पर मेरी तरफ से एक आदरांजलि है उनको।
1: थैंक यू सो मच सुदर्शन जी, सच अ ब्यूटिफुल थॉट। फ्रेंड्स, सुनते रहिए जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। 100 साल पहले एक आवाज ने इस दुनिया में कदम रखा जो हर दिल के दर्द का मरहम बन चुका था, मोहम्मद रफी। रफी साहब का हर सुर एक दुआ बन के उठा और उनकी हर धुन मोहब्बत का पैगाम बन चुकी थी। तो चलिए सुनते हैं पहला नगमा, हर दिल अजीज, सुदर्शन की आवाज।

बेहद खूबसूरत अंदाज सुदर्शन जी का। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, हुजूर चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। फ्रेंड्स, जिस तरह आपकी महबूबा का नूर कोई चुरा नहीं सकता, उसी तरह रफ़ी जी के किरदार की खुशबू कभी फीकी नहीं हो सकती। तो आइए ले चलती हूँ उनकी लाइफ के कुछ अनमोल किस्सों की तरफ और सुदर्शन फाटक के साथ उनके गीतों की तरफ। रफ़ी जी के परिवार का म्यूज़िक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उनका दुनिया का सबसे महान सिंगर में शुमार होना सिर्फ उनके जुनून और हार्डवर्क का सबूत है। जिस तरह सैगल साहब के शो में लाइट गुल हो जाने की वजह से मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका मिला और म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर जी ने उन्हें बॉम्बे आने का न्योता दिया, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री।

बिकॉज ऑफ हिज हार्डवर्क। चलिए इतिहास के एक पन्ने में से निकला एक सुकून भरा अगला गीत सुनते हैं, दिल को छूने वाली सुदर्शन की आवाज में।

0: रहेगी।
1: जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तबीयत बहलती थी नन्हे रफी जी की, जब एक फकीर गाते हुए उनके गांव की गली से गुजरता था, जो रफी जी की इंस्पिरेशन थे। और रफी साहब उस फकीर से इतने इंस्पायर्ड थे कि उस फकीर के आने से उनका हर दिन मानो रोशन हो जाता और बहार छा जाती थी। तो सुनते हैं ऐसा ही एक गीत सुदर्शन की नर्म आवाज में।

सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये सफर सुदर्शन और गुरप्रीत के संग? मुझे पूरा यकीन है कि दिलदार गायक के दिलदार श्रोताओं का दिल भी बड़ा होगा, जैसे रफी साहब का किरदार। क्या आपको पता है कि नए आने वाले कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को मौका दिया था रफी जी ने, और सिर्फ एक रुपए की साइनिंग अमाउंट लेकर गीत गाए? कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल? तो जिनका किरदार एक राजा जैसा हो, उनके लिए ये गीत तो बनता ही है। फ्रॉम अनदर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग सुदर्शन, जो वर्चुअल सिंगिंग प्लेटफॉर्म स्टार मेकर की फैमिली BML यानी बॉलीवुड म्यूजिक वर्ल्ड के कैप्टन यानी राजा हैं। तो चलिए सुनते हैं।

तक है जमाने पे जिस आवाज का जादू, उसके मेरे ऊपर उपकार बड़े थे। कहना है रफी के लिए बड़ा मुश्किल, इंसान बड़े थे या कलाकार बड़े थे। ऐसा कहना था हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी का। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजेश खन्ना काका और संगीत जगत के मसीहा मोहम्मद रफी की ऐसी जुगलबंदी हुई कि आज भी हर आशिक अपनी महबूबा के लिए वो गीत गाकर उसकी आंखों में डूब जाना चाहता है। उस गीत का जादू आज भी बरकरार है। तो सुनते हैं सुदर्शन की जादुई आवाज में वो गीत।

सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो गीत सुने, हर गीत ने हमारे दिल में रफ़ी जी के रंग छोड़े हैं सुदर्शन की आवाज़ में। अब जो अगला गीत है वो एक लाइवली एंड प्लेफुल सॉन्ग है, नहीं शम्मी जी पर नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक सौम्य और संजीदा एक्टर नवीन निश्चल पर फिल्माया गीत। तो दोस्तों, आनंद लेते हैं मस्ती और जोश से भरे अगले गीत का।

0: शीला।
1: सुदर्शन फाटक की आवाज में ये गीत एक नए रंग में दिखाई दिया। तो चलिए बढ़ते हैं मस्ती से सरोबार एक और गीत की तरफ।

भर गए ना आप जोश में? ये जोश और उमंग ऐसे ही बरकरार रखी हमारे जोशीले गायक सुदर्शन फाटक ने। और मोहम्मद रफी जी की बात करें तो चाहे जॉनी वॉकर का मजाक मस्ती भरा अंदाज हो, दिलीप कुमार की गहरी और दर्द भरी गजल, अमिताभ बच्चन का पावरफुल परसोना हो या शम्मी कपूर का एनर्जेटिक और फ्लर्टेशियस स्टाइल, रफी साहब की आवाज हर हीरो के लिए एकदम फिट लगती थी। जब उनका गाना सुनते तो ऐसा महसूस होता जैसे वो खुद ही गा रहे हों। और इसी तरह हमारे आज के कलाकार सुदर्शन फाटक भी हर गीत उसी अंदाज से बखूबी निभा रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं, तो सुनते हैं अगला गीत सुदर्शन की आवाज में।

जैसे रफ़ी जी के रोमांटिक नंबर्स उनके सिग्नेचर बन चुके थे, उसी रोमांटिक इमोशंस को सुना सुदर्शन की रोमांटिक आवाज़ में। सुनते हैं अगला क्लासिक सॉन्ग।

ऐसे तो रफी साहब के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब धर्मेंद्र जी के लिए जट्टियमला पगला दीवाना नाश नाश कर स्टूडियो में रिकॉर्ड किया रफी जी ने, तो धर्मेंद्र ने उनको गले लगा कर कहा, वाह क्या अंदाज में गाया है। तो रफ़ी ने उनसे कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब पर्दे पर लाना तुम्हारा काम है। तो सुनते हैं धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया यमला पगला दीवाना से कहीं हटकर अगला गीत।

मेरी हर बात समझ जाते हो तुम, फिर भी क्यों मुझे इतना सताते हो तुम? तुम बिन कोई और नहीं है मेरा, क्या इसी बात का फायदा उठाते हो तुम? सुदर्शन की आवाज ने इस गीत को पूरी तरह महसूस करवाया। और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, 100 साल एक आवाज, मोहम्मद रफी की आवाज। और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं अगला।

0: नाउमीद थे चारागार मेरी हालत को देखकर, पाया तबस्सुम तेरा, दवा उनकी काम कर गई। रफ़ी जी का बेहद खूबसूरत सॉन्ग आपने सुना सुदर्शन की आवाज़ में। किसी को उसके कद का गुमान था, वो आसमान था, सर झुका कर बैठा था। रफ़ी जी की सिंगिंग इतनी एफर्टलेस और सोलफुल थी कि लगता ही नहीं था कि कोई गाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। सैड सॉन्ग में वो दर्द भर देते जो सीधा दिल को छू जाता, और कॉमेडी सॉन्ग में ऐसी मस्ती कि चेहरे पर हंसी आ जाए। तो चलिए सुनते हैं उनका एक और रंग सुदर्शन की आवाज़ में।
1: मारे, खेल मारे, जंप पे।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और आज के कलाकार हैं सुदर्शन फाटक पुणे से, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। चेहरे पर इसी हंसी को बरकरार रखें, और आज की शाम अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो थोड़ा और करीब आ जाएं और सुनिए ये गीत।

दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। आज की शाम का आखिरी नगमा, ये गीत उन्हें हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर रखेगा। तो दोस्तों, इस गीत और अपने जज्बात के साथ रफ़ी साहब को एक सच्चे ट्रिब्यूट में महसूस कीजिए। सुदर्शन की आवाज़ और गुरप्रीत यानी मेरे साथ पहली बार, सुनते हैं उनका बहुत ही खूबसूरत गीत सुदर्शन की आवाज़ में।

0: नौशाद साहब के कुछ अल्फाज रफ़ी साहब के लिए। महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास, यह सदा गूंजेगी सदियों तक दिल के आसपास। मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। एक और खूबसूरत प्रोग्राम आपके समक्ष पेश है और ये प्रोग्राम लेके आए हैं यूके से रवि कुमार। रवि साहब के गीतों को खूबसूरत तरीके से आपने पिरोया है, आपने अपने स्वर में गाया है और उन गीतों को हम तक पहुंचाया है, तो हम वेलकम करते हैं रवि कुमार साहब का जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर। आपकी आवाज़ आपकी पहचान और हम क्या दें मिसाल।

आवाज में जो एक्टिंग अदायगी थी रफी साहब के, वही अदायगी रवि कुमार साहब की है। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता जिसे लेके आए हैं रवि कुमार साहब यूके से हमारे साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो पर।

अमानत फिल्म के लिए इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया था और आज हमारे साथ गा रहे हैं रवि कुमार साहब। इस गीत का संगीत दिया था रवि ने और गीत था साहिर लुधियानवी का। बेहद खूबसूरत गीत हम सुन रहे हैं रवि कुमार साहब की आवाज़ में। आपकी आवाज़ आपकी पहचान, जी हाँ, जयपुर रेडियो की पहचान बन चुकी है आपकी आवाज़। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।

गीत की अपनी जुबान होती है, गीत की अपनी कहानी होती है, और रवि कुमार ये कहानी कह रहे हैं अपनी जुबानी। आपकी आवाज, आपकी पहचान, अब क्या मिसाल दूं।

इंसान बन गई है किरण महताब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबा की। एक खूबसूरत गीत आरती फिल्म से लिया गया है और ऑन स्क्रीन प्रदीप कुमार और मीना कुमारी एक्ट्रेस पे फिल्माया गया था। इस गीत का संगीत दिया था रोशन ने और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। बेहद खूबसूरत गीत है ये और इस गीत को हम रोमांटिक गीतों में अमर गीत कह सकते हैं। और हमारे आज के जो स्वर हैं रवि कुमार साहब, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस गीत को अपनी आवाज से सजाया और आप तक पहुंचाया। बहुत बधाई, आपकी आवाज आपकी पहचान।

शमशान नहीं देखा। इस फिल्म का ये गीत शमी कुमार साहब पर ऑन स्क्रीन फिल्माया गया था और अमिताभ ही साथ में एक्ट्रेस के रूप में था और गीत था साहिर लुधियानवी साहब का और आवाज हमारे इस प्रोग्राम में रही रवि कुमार साहब की। आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी स्पेशल प्रोग्राम और उसको स्वर दे रहे हैं हमारे आज के स्वर रवि कुमार। आपकी आवाज आपकी पहचान।

फिल्म असली नकली का ये गीत देवानंद साहब और साधना एक्ट्रेस पर फिल्माया गया ऑन स्क्रीन। म्यूजिक शंकर जयकिशन साहब का था और गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और अपनी आवाज अपने स्वर में सजाया हमारे लिए यूके से रवि कुमार साहब ने। ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, आपकी आवाज आपकी पहचान। और रफी साहब का एक बहुत मशहूर गीत है ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, आइए सुनते हैं रवि कुमार साहब से ये गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान।

इस गीत को फिल्म महबूब की मेहंदी के लिए रफी साहब ने गाया था। म्यूजिक इस गीत का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का रहा और गीत लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। और आपके लिए आज के स्वर में रवि कुमार साहब ने ये गीत आप तक पहुंचाया। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो फर्ड।

जब भी मौसम की बात चलेगी तो लोफर फिल्म का ये गीत कभी भी हमारे जहन से दूर नहीं हो सकता। इस गीत को ऑन स्क्रीन एक्टर धर्मेंद्र साहब और मुमताज पर फिल्माया गया था। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी साहब ने।

आपने सुना फिल्म प्यार ही प्यार का ये गीत। ऑन स्क्रीन धर्मेंद्र और वैजयंती माला पर फिल्माया गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और हमारे आज के स्वर रवि कुमार आप तक पहुंचा रहे थे ये गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड आज के

तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। जी हाँ, गीत को संगीत से सजाया था एस डी बर्मन साहब ने और इसको ऑन स्क्रीन देवानंद साहब और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। और आप तक इस गीत को पहुंचा रहे थे हमारे आज के स्वर, आज के कलाकार रवि कुमार साहब। आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

आज के छोटे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। अभी आपने सुना एक गीत जिसे आवाज दे रहे थे रवि कुमार आज के स्वर। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था और धर्मवीर फिल्म से इस गीत को लिया गया। ऑन स्क्रीन जीनत अमान और धर्मेंद्र पे फिल्माया गया था ये गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान आप सुन रहे हैं आज के स्वर प्रोग्राम में रवि कुमार साहब के वो गीत जो रफी साहब ने गाए हैं।

मुझे दर्द-ए-दिल का पता न था मुझे आप किस लिए मिल गए। ये खूबसूरत गीत आकाशदीप फिल्म से था। इसका संगीत दिया था चित्रगुप्त ने और गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। और आज इसको स्वर दे रहे थे हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। खूबसूरत गीतों का ये गुलदस्ता लेके आए हैं यूके से रवि कुमार साहब जयपुर।

0: हसरत जयपुरी साहब का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत और ऑन स्क्रीन शमी कपूर साहब और आशा पारिक पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म पगला कहीं का से था और इसे आज स्वर दे रहे थे इस मंच से हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब यूके से। दुआ है हमारी आवाज सुने आपकी दुनिया सारी। रवि कुमार साहब बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं, यूं ही गाते रहें और यूं ही हमारे लिसनर तक अपने गीत पहुंचाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये संगीतमय सफर यहीं तक, आपकी आवाज आपकी पहचान। बहुत आभार बहुत शुभकामनाएं रवि कुमार साहब यूके से। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: हे हाय दोस्तों, मेरा नाम है, अब तक तो आप मेरी आवाज पहचान गए होंगे। इतना पुराना और लंबा रिश्ता जो बन गया है आप लोगों के साथ, कोई फेमस सेलिब्रिटी तो नहीं, फिर भी खजाने की कमी नहीं है मेरे पास। अनमोल खजाने लेके आई हूँ अपने आओ झूमे गाए म्यूजिक ग्रुप से, सिर्फ जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान पे। मेरा नाम है रति भार्गव और पास में मेरे जो कोहिनूर हैं, नवरत्न हैं, उनके नाम कुछ यूं हैं: किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आरडी बर्मन, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, गुलजार और हमारी बॉलीवुड जगत के जगमगाते सितारे जैसे माधुरी, श्रीदेवी, डिंपल कपाड़िया, शर्मिला टैगोर, जूही चावला, जयप्रदा, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, शाहरुख खान, सनी देओल, संजय दत्त, आशा पारेख, शर्मिला, नीतू वगैरह वगैरह। हमारा आज का ये एपिसोड है बॉलीवुड की चांदनी और लोगों के दिलों पर राज करने वाली हवा हवाई पे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए हैं, मैं बात कर रही हूँ श्रीदेवी की, जो सिनेमा जगत की पहली महिला सुपरस्टार रह चुकी हैं। श्रीदेवी को लेडी अमिताभ बच्चन और पहली सुपरस्टार का दर्जा दिया जाता है। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का जन्म हुआ था शिवकाशी तमिलनाडु में। श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और चाइल्ड एक्टर के तौर पर साल 1967 में तमिलनाडु कंदन करुणे में काम किया था। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले श्रीदेवी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी थीं। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में 4 दशक से भी ज्यादा समय तक लोगों को अपनी एक्टिंग से मनोरंजन किया। तो चलिए दोस्तों, आपको श्रीदेवी से जुड़े कुछ अनकहे किस्से सुनाते हैं और उनके कुछ बेहतरीन गाने जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो सुनते हैं श्रीदेवी का ये जादू भरा परफॉर्मेंस बिमल और कविता की मधुर आवाज।

आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई बात नहीं। आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई

चांदी के पर्दे पे जो चांदनी थी, जो बेजान सीन को अपने प्रेजेंस से जिंदा कर देती थी, और जिनकी आंखों में इन्फेक्शस सी चमक थी, एन एक्ट्रेस हु लिटरली ब्रॉट स्क्रीन टू लाइफ, वो लाइफलेस कैसे हो सकती हैं? श्रीदेवी, आपने हमें जादू दिखाया और जादू सिखाया। मेरी आंखों के सामने उभर रहे हैं वो इन्फेक्शस एक्सप्रेशंस, वो चमक

दमकती आंखें, वो दमकते एक्सप्रेशंस, और हम तो उन्हें ऐसे ही याद रखेंगे। ट्रांसपेरेंट छतरी, ट्रांसपेरेंट रेनकोट, ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंसेस, श्रीदेवी सच में इस जादू के लिए शुक्रिया। फिल्म लम्हे को 30 साल हो चुके हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना, तानिया और जगदीश की मधुर आवाज़।

क्या आप जानते हैं दोस्तों, श्रीदेवी का वास्तविक नाम श्री अम्मा अय्यर अय्यप्पन था। पर्दे पर उनके लिए श्रीदेवी नाम तय किया गया। बता दें कि श्रीदेवी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों के साथ काम किया। श्रीदेवी के करियर की बात करें तो उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर साउथ इंडस्ट्री से शुरुआत की थी। इसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने 16 सावन से डेब्यू किया, जिसमें वह जितेंद्र के साथ नजर आई थी। जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में से 13 उनकी सुपरहिट फिल्में रहीं। सुनते हैं ये हमारा अगला गाना फिल्म हिम्मत वाला से, बोल इंडिवर के, म्यूजिक दिया बपीदा ने और गाया बेहद खूबसूरती से किशोर दा और लता मंगेशकर ने। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं आपके लिए किशोर और संगीता अपनी सुरीली आवाज से।

श्रीदेवी ने 90s में आई थिंक लड़कियों से बहुत सारा प्रेशर हटा दिया है ना। हमेशा स्लिम होना, हमेशा खूबसूरत दिखना, एलिगेंट होना, प्रॉपर होना, स्टाइल मारना कोई जरूरी नहीं, ये समझा दिया। बी योर नेचुरल मैड क्रेजी सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, आई मीन जो मूछे लगा के आंखें भेंगी करके भी पूरे देश का दिल जीत सकती थी, वो कितनी हेल्दी रोल मॉडल थी, सोच के देखिए। पर्दे पर अपने चुलबुले अंदाज से सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली थी हवा हवाई, हर उम्र के लोगों की पसंदीदा थी। अगर आप भी तनाव फील कर रहे हो, अपना मूड अच्छा करने के लिए बस ये गाना सुन लीजिए और आपका मूड झट से अच्छा हो जाएगा। इसे सुनाने आ रही है गायत्री और मनीषा आपके लिए।

सिग्नेचर श्रीदेवी इन ऑल हर ग्लोरी, एक ही इंसान एक साथ मैड, इनसेन, सेक्सी, एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड स्टेलर परफॉर्मर कैसे हो सकता था। एक तरफ ऐसे गानों की मैडनेस सच एज न जाने कहां से आई, या करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, या फिर ऑफ कोर्स हवा हवाई न जाने कितने, तो दूसरी तरफ सेंसुअलिटी जो स्क्रीन पे आग लगा दे, मतलब जाबाज ले लो या मिस्टर इंडिया का दूसरा गाना ले लो एंड मेनी अदर्स, बीच में हम मेस्मराइज्ड। सुनते हैं दोस्तों वो गाना जाबाज मूवी का, हर किसी को नहीं मिलता, श्रीदेवी की स्टेलर परफॉर्मेंस जिसने आग लगा दी थी, मेरी यानी रति और गगन की आवाज में।

हिंदी फिल्मों में समाज को संपूर्ण बनाने की सारी विधा मौजूद है। नायक की खुददारी हो या नायिका का त्याग, या फिर आपसी प्रेम भाव का आचार विचार हो या समाज को एकजुट रखने का संदेश, यह सभी चीजें हिंदी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। नायक और नायिकाओं के बीच प्रेम और आकर्षण की मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी और अनिल कपूर पर फिल्माया गीत कांटे नहीं कटते दिन ये रात इश्क और हुस्न की इंतहा को जग जाहिर करता है। किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाज ने इस गीत को मधुरतम बनाया है। गीत आई लव यू के भाव से शुरू होता है और इसी भाव के साथ खत्म भी होता है। आइए सुनते हैं ये गीत प्रेरणा और रेस की आवाज में।

1989 में प्रदर्शित फिल्म चांदनी का ये गीत, इसमें श्रीदेवी और ऋषि कपूर ने पानी में आग लगा दी थी। हुस्न की अदा बारिश के मौसम में इस गीत में काफी सुहावनी बन पड़ी है। गीत संगीत और श्रीदेवी के बेजोड़ नृत्य के गीत को मधुर अंदाज दिया है आनंद बख्शी के लिखे इस गीत में। गीत काफी मनोहरी बना। इसे सुनते हैं मानवेंद्र और संगीता की सुमधुर आवाज में।

0: आग लगाई।
1: दिल्ली ने कीरत आई।
2: मैं आपके साथ रति भार्गव अपने आओ झूमे गाय के कलाकारों के साथ आज के इस स्पेशल सेगमेंट में याद कर रहे हैं उन्हें जो कुछ ज्यादा ही जल्दी चली गई। हम उन्हें तो मिस करेंगे ही और अभी उन्हें जितनी बेहतरीन फिल्में करनी थी उन्हें भी मिस करेंगे। 80 के दशक में एक और गीत देखने और सुनने को मिला जिसमें हुस्न और इश्क का बेजोड़ संगम था। हमारा अगला गाना हुस्न और इश्क की अदा पर चांदनी मूवी का ये गाना सुनते हैं प्रियंका और गिरीश की मधुर आवाज में।

श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक कमर्शियल हीरोइन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में नागिन से लेकर चाल पास, चांदनी, जुदाई, खुदा गवाह, नगीना, मिस्टर इंडिया जैसे कई शानदार फिल्मों में दमदार अभिनय किया। अभिनेत्री फिल्मी पर्दे से दूर हो गई थी, हालांकि 15 साल के लंबे समय के बाद 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में शानदार वापसी की। सुनते हैं हमारा अगला नगमा दो दोस्तों की दास्तान पे, और इसे सुनाने आ रहे हैं मुकेश और मंदार अपनी मधुर आवाज में।

रानी मेरा नाम, जूली और सोलवा सावन जैसी चुटपुट फिल्में करने के बाद हिंदी सिनेमा को अपने करियर का अगला मुकाम बनाने वाली श्रीदेवी 1983 में जितेंद्र के साथ फिल्म हिम्मत वाला की तो पूरी हिंदी पट्टी में हंगामा हो गया था। इतनी मादक और इतनी मोहक अभिनेत्री इससे पहले हिंदी सिनेमा में कोई दूसरी उनको नजर ही नहीं आई। इसके बाद श्रीदेवी ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। आखिरी रास्ता, नगीना, जाबाज और कर्मा जैसी फिल्म करने के बाद वह 3 साल में ही नंबर 1 की कुर्सी पर आ बैठी थी। इसके बाद मिस्टर इंडिया, निगाहें से होते हुए करियर उनका अगला टर्निंग पॉइंट था चांदनी। श्रीदेवी को सफेद लिबास में ढली चांदनी देख उस समय हर लड़की उन्हें कॉपी करना चाहती थी। श्रीदेवी की ये फिल्म गवाही देती है इस बात की कि आज 30 साल के बाद भी चांदनी की चमक फीकी नहीं पड़ी है। और सुनते हैं उनका ये सुपरहिट गाना रूही और विश्वजीत की सुमधुर आवाज में।

मुझे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। दिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

0: कौन? मैं?
1: Yes, yes, yes, yes.
0: क्यों?
1: कोई भूल कोई तोहफा, तुम कुछ भी साथ नहीं लाते, बड़े बहू समझाऊं तुम्हें?

की आवाज आपकी पहचान का ये मंच जयपुर रेडियो वर्ल्ड। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। सभी श्रोताओं को अभिवादन हमारी ओर से। और आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल को मंच से हम सुना रहे हैं आपको उन्हीं के गाए गीत, क्योंकि आज है रवि कुमार, रवि सूर्य कुमार का जन्मदिन। तो जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं रवि सूर्य कुमार को।

वैसे तो हमारे श्रोता रोज सितारों में ले चलूं, आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड आपसे मुखातिब है।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत, और आज इस प्रोग्राम में हम पहुंच रहे हैं जूनागढ़ गुजरात में। जूनागढ़ गुजरात आजकल जयपुर रेडियो पर छाया हुआ है, और आजकल एक और महीना छाया हुआ है जिसका नाम है फाल्गुन, बसंत का महीना, और वैलेंटाइन सीजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी वाले। और इस मौसम में हमारे साथ

0: मेरी पहचान बनाने के लिए मुझे ये दूसरी बार मौका दिया है, इसलिए मैं थेपू रेडियो का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और हमारे श्रोताओं का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने भी मेरी आवाज को सराहा है और मुझे इस बार भी सुनने के लिए शायद वेट कर रहे होंगे कि
1: बिल्कुल,
0: इस बार मैं
1: सुना भी
0: क्या
1: है
0: गाऊँ।
1: और सराहा भी है जी।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो आज जो आप गीत लेके आई हैं हमारे संग हमारे साथ, उन गीतों के बारे में पूछा जाए या आपके जो गायन शैली है, गाती हैं आप, वो कब से गा रही हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। और फाल्गुनी, आपका नाम फाल्गुन है और फाल्गुन का महीना भी चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे?
0: मेरा नाम फाल्गुन है, फाल्गुनी है, और इसका अर्थ है पूर्णिमा, सुंदरता, पूर्णिमा, जो चंद्र पूरा खिला हुआ है उसका अर्थ भी फाल्गुनी होता है।
1: और मौसम भी और महीना भी ये फाल्गुन का कहलाता है ना?
0: या वो भी यही कहलाता है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे फाल्गुन महीने में ही फाल्गुनी को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिया, इसलिए शुक्रिया भी करना चाहती।
1: बहुत अच्छी बात के ये संजोगी है, हमने इसको कोई विचार करके नहीं दिया, और ऐसा अक्सर हो जाता है जो सच में गीतों के साथ, संगीत के साथ जुड़े रहते हैं। तो ज्यादातर गीत जो आप लेके आई हैं वो हमें लगता है दिल पे है, दिल की कहानी पे है। तो पहला गीत जो है दो लफ्जों की दिल की कहानी, तो ये गीत आपको क्यों अच्छा लगता है और इसको, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें और फिर थोड़ा सा गुनगुनाएंगे?
0: जी जरूर। ये फिल्म द ग्रेट गैम्बलर नाम की फिल्म का ये सॉन्ग है।
1: जी
0: इस गाने का शब्द जो है वो भी इतना दिल को छू जाने वाला हर शब्द है, जब सुनेंगे सब तभी पता चलेगा। मैं दो लाइन गा के सुनाती हूँ। दो लफ्जों की दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी।
1: बहुत खूबसूरत। ये दो लफ्जों की है, यानी दो शब्दों में ही दिल की कहानी सिमट जाती है, ये प्रश्न है, इसको हम बाद में आपसे करेंगे, लेकिन इससे पहले आपका ये सॉन्ग सुन लेते हैं।

0: दो लफ्जों की है दिल की कहानी, क्या है मोहब्बत और क्या है जवानी। और इस जिंदगी में कितने गम हैं, खुशियां हैं, क्या है ये जिंदगी। और दिल की कहानी दो लफ्जों में कह रही थी अपनी जुबानी फाल्गुनी दवे। एक बार फिर वेलकम है फाल्गुनी आपका इस प्रोग्राम में। क्या कहेंगी इस गीत के बाद?
1: इस गाने में प्यार भी है, प्यार का इकरार भी है, और जिंदगी में क्या है इसमें है, इस जिंदगी के दिन कितने कम
0: है,
1: कितनी खुशियां,
0: कितने
1: गम है
0: जी,
1: कितने है गम, गम के बारे में, खुशियों के बारे में, सब कुछ इसमें दर्शाया है। इसलिए
0: ऐसे कहते हैं ना कि जब कोई साथ देने वाला हो तो हो सकता है कि वो गम जो हैं वो कम हो जाएं थोड़े। और इसलिए अगला गीत जो आप लेके आई हैं वो है तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। बात जिंदगी और जिंदगी के बारे में हो रही है, दिल के बारे में हो रही है, तो इस गीत को थोड़ा सा सुनाएंगे, कुछ बताएंगे इस गीत के बारे में आप हमें। ये गीत आपको क्यों पसंद है, क्यों पसंद है, कब से गा रही हैं, और जब से पहली बार सुना तो इस गीत को कैसे, किसको शामिल किया आपने, तो क्या ये सब बातें बताएंगे आप हमें?
1: मुझे गाने का पहले से शौक है, बचपन से मैं गाना बहुत गाती थी, मेरे पापा भी मेरे साथ गाते थे कभी कभी
0: जी,
1: पर बचपन में ऐसा कुछ नहीं, बस यूं ही गुनगुना लेते थे, कोई फीलिंग्स ऐसा कुछ नहीं था। मगर अब जब बड़े हुए तब समझ में आया कि ये गीत, ये गाना है, ये क्या कहना चाहता है,
0: हाँ, इसके बोल क्या है, इनके शब्दों में क्या कह रहे हैं जी,
1: कौन सी फीलिंग से, ये सब पता चलने लगता है। तो इस गाना, ये जो गाना मैं पेश करने चाह रही हूँ, आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का नाम ही ऐसा है कि आप तो ऐसे ना थे।
0: हाँ, फिर ऐसे कैसे हो गए,
1: पहले आप कैसे थे, अब कैसे थे, कैसे हो गए। जब कोई प्यार में आता है तब उसकी लाइफ चेंज ही हो जाती है।
0: अच्छा, ऐसा है क्या
1: इसमें?
0: नहीं नहीं, हमें मालूम नहीं है, हम आए नहीं ना इसलिए। हाँ ठीक है, अच्छा रहा।
1: हाँ,
0: चेंज हो जाता है, सारा चेंज हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चेंज में जमीन आसमान ऊपर हो जाए, जमीन ऊपर हो जाए, आसमान नीचे हो जाए, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है।
1: एग्जैक्टली।
0: हाँ, तो पहले थोड़ा सा गाना आप हमें सुनाइए, फिर हम उस गीत को शामिल करते हैं आपकी आवाज में। हमारे संग है फाल्गुनी दवे, जूनागढ़ गुजरात से जी।
1: जहाँ

0: जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, ये जिंदगी है सफर और तू सफर की मंजिल है। क्या कहेंगे इस खूबसूरत गीत के बाद। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। कुछ बातें कुछ गीत लेके हमारे साथ हैं जूनागढ़ गुजरात की फाल्गुनी दवे। फिर से वेलकम है, स्वागत है इस लाइव शो में। जी फाल्गुनी।
1: ये जिंदगी है सफर और तू सफर की मंजिल है। हमारी जिंदगी है वो एक जीवन मृत्यु के बीच का एक सफर है। उस सफर में हमें कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, कई तरह के मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ हमारी जिंदगी में कोई अपना हो तो हमें कहीं भी कोई भी मंजिल तक जाना हो तो हम वहां तक
0: उसका हाथ पकड़ के साथ चल सकते हैं ना, हम
1: साथ चल सकते हैं। और उसमें एक वो भी है कि राह में कोई हम सफर भी जरूरी है। तो हम सफर कोई अपना जो हमारे साथ हो तो ये जिंदगी का सफर है
0: वो बहुत सुहाना हो सकता है।
1: आसानी से हम हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हो, सुहाना सफर हो सकता है।
0: ये सफर तो है ही, इसको सुहाना बनाने के लिए जो है तो इसके लिए तो दिल को देना पड़ेगा, दिल की कहानी बतानी पड़ेगी और दिल का एतबार भी करना पड़ेगा। तो दिल पे भी आपने कुछ गीत गाए होंगे, दिल का मौसम चल रहा है आजकल, तो कोई गीत हो जाए।

0: वही गीत सुनाना चाहती हूँ दर्शकों को।
1: दिल का हिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। फाल्गुनी दवे गा रही हैं हमारी आज की सिंगर मेहमान, अपनी बातों के साथ, कुछ बातें कुछ गीतों में।

0: दिल धड़कता है बार बार, क्या कीजिए। और इस धड़कन के साथ गाता है जयपुर रेडियो और करता है आपसे बात। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम में। हमारे साथ जूनागढ़ गुजरात से फाल्गुनी दवे, वेलकम है फिर से। क्या कहेंगी दिल के बारे में है फाल्गुनी, कुछ बताएंगी।
1: दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए।
0: बिल्कुल कोई भरोसा नहीं ना,
1: किसी पे भी आ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं।
0: ओह माय गॉड, बिल्कुल भरोसे वाली बात करें तो फिर क्या हो सकती है। जयपुर रेडियो पे तो आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये आपके संग हमेशा गाता है। तो दिल की बात हुई और उसके बाद घेरे हैं इसमें, ऐसा तेरी बाहों के, तो कौन सा

0: गीत सुनाना चाहेंगी आप?
1: जरूर जरूर।
2: बाहों में चले आओ हमसे सनम, क्या पर्दा हो हमसे सनम, क्या पर्दा।
0: बिल्कुल, हम तो ये कह रहे सोच रहे थे कि बात पर्दे में ही रहे, लेकिन ये पर्दे में रहने वाली बात नहीं है, क्योंकि गीत ही ऐसा है जो सुनाने जा रही हैं फाल्गुनी दवे। आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज, आपकी पहचान, कुछ बातें, कुछ गीत। और ये सुरीलस गीत हमसे सनम क्या पर्दा, और हम हमारे श्रोताओं से कहेंगे कि हमसे क्या पर्दा, क्योंकि हम और आप तो रोज बात करते हैं, रोज मुलाकात करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करने आई हैं फाल्गुनी दवे जूनागढ़ गुजरात से। आपकी आवाज, आपकी पहचान, और वो भी यही कह रही हैं गीत में कि हमसे क्या पर्दा। तो यदि आप भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो फाल्गुनी के संग गा सकते हैं। फाल्गुनी जूनागढ़ गुजरात से हैं। तो अगले गीत के बारे में और क्या कहेंगे इस गीत के बारे में फाल्गुनी?
1: ठीक, इसके बाद मैं दिल है के मानता नहीं फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये गाना।
0: हाँ, वो तो लगता है कि इन गीतों को सुन के बाद में तो यही लगता है कि दिल है कि मानता नहीं है। आप इसको पकड़ पकड़ के रखती हैं, फिर वो दौड़ जाता है, भाग जाता है। तो कुछ सुनाएंगे इसको, दिल के करीब है, तो दो लाइनें गा के भी सुना दीजिए, फिर तो हम आपकी आवाज में सुनेंगे ही, पर लाइव है तो।

0: खूबसूरत गीत मुश्किल पड़ी है रश्मि मोहब्बत ये जानता ही नहीं दिल है कि मानता ही नहीं हमारे पास होता है दिल हमारे भीतर होता है और हमारी बात भी नहीं मानता इसकी वजह क्या है हम भी नहीं जानते शायद फाल्गुनी कुछ बता सके फाल्गुनी क्या कहोगी इस गीत के बाद आपने ये तो बताया कि आपके दिल के बहुत करीब है ये गीत और इस गीत के बारे में कुछ कहेंगी हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगी आप इस प्रोग्राम के समापन पे
1: बस इस गाने के बारे में मैं बेकरारी क्यों रो हो रही है ये जानता नहीं दिल है के मानता नहीं दिल का कोई भरोसा नहीं जैसा अगले गाने में था दिल का कोई भरोसा नहीं
0: बिल्कुल
1: कब कहाँ कैसे क्या हो जाए
0: उड़ जाए
1: इस तरह हम कुछ भी नहीं कह सकते
0: बिल्कुल।
1: दिल का कोई भरोसा नहीं और मैं सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ फिर से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मेरी आवाज मेरी पहचान को इस तरह पहचान बनाई है मेरी आवाज को और मुझे इस तरह से सराहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया
0: बहुत शुक्रिया बहुत आभार फाल्गुनी हमारे साथ रही इस मंच पर जिसका नाम है कुछ बातें कुछ गीत आज की सिंगर मेहमान का हम जूनागढ़ गुजरात की फाल्गुनी का आभार व्यक्त करते हैं धन्यवाद डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड आपकी आवाज आपकी पहचान प्रस्तुत है प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत और आज इस प्रोग्राम में हम पहुंच रहे हैं जूनागढ़ गुजरात में जूनागढ़ गुजरात आजकल जयपुर रेडियो पर छाया हुआ है और आजकल एक और महीना छाया हुआ है जिसका नाम है फाल्गुन बसंत का महीना और वैलेंटाइन सीजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी वाले और इस मौसम में हमारे साथ अपने दिल की बात दिल की कहानी बताने आ गई हैं फाल्गुनी दवे वेलकम है फाल्गुनी कैसा लग रहा है जयपुर रेडियो के इस मंच पर हमारे संग हमारे साथ
1: हेलो एवरीवन नमस्ते मैं फाल्गुनी दवे गुजरात जूनागढ़ से हूँ पहले तो मैं जयपुर रेडियो का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँ
0: शुक्रिया आपका भी
1: फिर से मौका दिया मेरी आवाज को मेरी पहचान बनाने के लिए मुझे ये दूसरी बार मौका दिया है इसलिए मैं जयपुर रेडियो का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और हमारे श्रोताओं का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने भी मेरी आवाज को सराहा है और मुझे इस बार भी सुनने के लिए शायद वेट कर रहे हो
0: बिल्कुल सुना भी है और सराहा भी है जी
1: थैंक यू सो मच
0: तो आज जो आप गीत लेके आई हैं हमारे संघ हमारे साथ उन गीतों के बारे में पूछा जाए या आपके जो गायन शैली है गाती हैं आप वो कब से गा रही हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं और फाल्गुनी आपका नाम फाल्गुन है और फाल्गुन का महीना भी चल रहा है तो इसके बारे में कुछ बताएंगे
1: मेरा नाम फाल्गुन है फाल्गुनी है और इसका अर्थ है पूर्णिमा सुंदरता पूर्णिमा जो चंद्र पूरा खिला हुआ है उसका अर्थ भी फाल्गुनी होता है
0: और मौसम भी और महीना भी ये फाल्गुन का कहलाता है ना
1: या वो भी यही कहलाता है इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे फाल्गुन महीने में ही फाल्गुनी को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिया इसलिए शुक्रिया भी करना चाहती
0: बहुत अच्छी बात कि ये संजोगी है हमने इसको कोई विचार करके नहीं दिया और ऐसा अक्सर हो जाता है जो सच में गीतों के साथ संगीत के साथ जुड़े रहते हैं तो ज्यादातर गीत जो आप लेके आई हैं वो हमें लगता है दिल पे है, दिल की कहानी पे है। तो पहला गीत जो है दो लफ्जों की दिल की कहानी, तो ये गीत आपको क्यों अच्छा लगता है और इसको इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें और फिर थोड़ा सा गुनगुनाएंगे।
1: जी जरूर। ये फिल्म द ग्रेट गैम्बलर नाम की फिल्म का ये सॉन्ग है
0: जी।
1: इस गाने का शब्द जो है वो भी इतना दिल को छू जाने वाला हर शब्द है। जब सुनेंगे सब तभी पता चलेगा। मैं दो लाइन गा के सुनाती हूँ। दो लफ्जों की दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी।
0: बहुत खूबसूरत। ये दो लफ्जों की है यानी दो शब्दों में ही दिल की कहानी सिमट जाती है, ये प्रश्न है। इसको हम बाद में आपसे करेंगे, लेकिन इससे पहले आपका ये सॉन्ग सुन लेते हैं।

है हमारे स्पेशल शो में। आज हम बात करेंगे 2000 के दशक की रानी की, रानी जो बॉलीवुड के साथ ही लाखों दिलों की धड़कन रह चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा रानी मुखर्जी की। अगले एक घंटे में हम रानी के जीवन से जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्से सुनेंगे और उन पर फिल्माए कुछ खूबसूरत गीतों का लुत्फ उठाएंगे। तो आइए जनाब, आज के शो का आगाज करते हैं इस गीत से जो देवयानी जी और संतोष जी लेकर आ रहे हैं।

दोस्तों, रानी ने जब फिल्मी दुनिया में पदार्पण किया तब उनके छोटे कद, सांवला रंग और कुछ हस्की सी वॉइस को लेकर उनका काफी मजाक उड़ाया गया था। उनकी पहली हिंदी फिल्म राजा की आएगी बारात, जो 1997 में रिलीज हुई थी, को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया गया। लेकिन रानी ने इस हार से हार नहीं मानी और अगले ही साल 1998 में मुकेश भट्ट की गुलाम में निभाए उनके रोल को बेहद पसंद किया गया। गुलाम के बाद लोगों ने रानी को नोटिस करना शुरू किया। आइए सुने फिल्म गुलाम का खूबसूरत गीत जादू है तेरा ही जादू, प्रशांत नायर जी और किरण पवार जी की आवाजों में।

हमें बहुत ही उत्साह दिया और हर्ष से भरे हुए अपने गीत अपनी आवाज में हमें प्रेषित किए। हम उन सब का आदर करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और

0: ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
1: क्या हुआ चाचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
0: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
1: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
0: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू काम में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ आ घूम।
1: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा,
1: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
0: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
1: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
0: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
1: चाचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
1: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो। तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
4: तवा बुधिराया जयपुर रेडियो ते भक्ति आराधना।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान,
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।

जयपुर रेडियो के श्रोता सुन रहे थे गीता का 11वां अध्याय परमा एकादशी के उपलक्ष्य में। डिजिटल वॉइस वर्ड का

ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुने एकादशी भजन।

0: का ये ताज़ा एपिसोड लेकर मैं आरजे भूमिका आप सभी का वेलकम करती हूँ। जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 यानी अर्चना अग्रवाल के संग।
1: अब देखो भूमिका, तुमने ताज़ा की बात कर ही दी है तो फिर अभी अभी जो ताज़ा ताज़ा गीत प्राप्त हुए हैं अर्चू रानू ने मुझे अभी अभी भेजे हैं, तो क्यों ना उन गीतों को सुन लिया जाए। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आप सुन रहे हैं और हमारे साथ है इस प्रोग्राम में अर्चू रानू 16 और ये पहला गीत आप सबकी नजर।

क्या ये जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है, और ये प्यार ना होगा कम। सच में अचुरानू का इस मंच से, जब रेडियो फर्ट से, अभी तक प्यार कम नहीं हुआ है। और साईं राम ईश्वर की अनुकंपा रही तो सच में ये अटूट रिश्ता। इस प्रोग्राम से मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, सदा बना रहे इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ। आइए सुनते हैं अर्चुरानो 16 का ये अगला सुरीला सॉन्ग, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच। और इसी वादे और उम्मीद के साथ आइए सुनते हैं अगला सॉन्ग अर्चुरानो 16। साथ दे रहे हैं इस गीत में डॉक्टर नरेंद्र तनेजा।

जीवन भर साथ रहें, ना हो के जुदा। और यदि ये वादा है और दिल में सच्चा इरादा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। चाहे कितनी हवाएं तेज चलें, चाहे कितने ही तूफान आए। आप सुन रहे हैं, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। ये सुरीला अंक जिसमें अर्चु रानू लेके आई हैं अपने सुरीले नए साथियों को। अशोक कुमार आ गए हैं अर्चु रानू के संग।

निभाना पड़ेगा और वादा करके निभाना ही सबसे बड़ी तारीफ होती है और वही जिंदगी होती है, उससे बड़ी कोई चीज होती नहीं है। हम अपनी वफा पर ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जान देंगे। और ये वफा, ये वादा निभाना ही सबसे बड़ी चीज होती है। तरसती निगाहों ने आवाज दी है और आवाज का है ये मंच, जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। और इस मंच पर गाती हैं अर्जुन रानू अपने सुरीले साथियों के साथ। यदि आप भी गाना चाहते हैं तो अर्जुन रानू 16 की स्मूल आईडी को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सुनते हैं अर्जुन रानू और उनके को सिंगर के साथ गाया अगला गीत। और इस गीत में राम किंग आए हैं साथ देने अर्जुन रानू का।

हंसते हंसते कट जाए रास्ते, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे कितना जरूरी पैगाम। आप सबके नाम हमने सुना। हमारी आज की सुरीली मेहमान अर्चुरानू 16 का साथ दे रहे थे राम किंग इस गीत में, और इसी वादे और इरादे के साथ कि हमें बदलना नहीं है, दुनिया है, बदले तो बदलती रहे। आइए सुनते हैं अगला सुरीला सॉन्ग महालेशम के साथ अर्चुरानू।

प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, और सच में प्यार ऐसा ही होता है। हमारे श्रोताओं का इस जयपुर रेडियो के इस प्रोग्राम में बहुत खास प्यार है, और उसी प्यार को कह रहे थे महाले सम साहब अर्चुरानु के संग। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आपने सुना ये सुरीला सॉन्ग। और आइए अब सुनते हैं ये अगला सॉन्ग। अर्चुरानु गा रही हैं राजेश काला के साथ।

दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, और बोल आवाज, और आवाज आपकी पहचान। और यही हम कहते हैं कि मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और इसी के माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं और आपके बोल पूरी दुनिया तक, आपकी आवाज पूरी दुनिया तक, क्योंकि ये है जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। आपने सुना ये दो गाना हमारी सुरीली सिंगर अचुरानो 16 और उनके एक और सिंगर से। आइए सुनते हैं अगला गीत। इस गीत में आ गए हैं किंग अजमेर। अचुरानो के संग

और ये प्यारा सा गीत प्यारी सी आवाजों में अजमेर किंग और अर्चुरानू आप तक पहुंचा रहे थे। और हम यही कहेंगे कि गीतों से प्यार, पूरा दुलार, पूरा साथ आप चाहते हैं तो आइए इस प्रोग्राम में, इस मंच पर जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। आवाज और गीत दोनों का संगम, और यही संगम हमें मिलाता है गीतों की उन लहरों से जिनसे आप बात करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं और मचलना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और जीने की चाहत से अपने सांसों की ऊर्जा भरना चाहते हैं। तो गीत गाइए, गीत सबसे बड़ी थेरेपी है आज के इस युग में जिसे लोग कलयुग कहते हैं। सारा स्ट्रेस सब कुछ भूल जाएंगे कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन यह सच है। और अब एक खूबसूरत एक्सपेरिमेंट

0: राजेश काला दे रहे थे इस सुंदर सुरीले प्रयोग में अचुरानों का साथ। और आइए अब सुनते हैं और करते हैं अगली शुरुआत।
1: मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये ताजा एपिसोड लेकर मैं आरजे भूमिका आप सभी का वेलकम करती हूँ। जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चु रानू 16 यानी अर्चना अग्रवाल के संग संगीत की दुनिया में कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। अपने अपने गीतों और गीतों के साथ आज का पहला गीत

अनुराग कह रहे थे मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ। जी हाँ, जयपुर रेडियो के मैं आवाज़ हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मंच के मेल सिंगर बता रहे थे अपनी बात, कह रहे थे मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ। आपकी आवाज़, आपकी पहचान का ये मंच। आप सुन रहे हैं अनुराग सिन्हा को मुंबई से। और अब अगले गीत में क्या कह रहे हैं, शायद यही कि आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, क्योंकि ये खुशी है गीत गाने की, गुनगुनाने की, अपने गीतों को सब तक पहुंचाने की। जयपुर रेडियो वर्ल्ड का ये प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, मैं अनुराग सिन्हा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में आप सुन रहे हैं अनुराग सिन्हा की आवाज। दिन महीने साल यूं गुजरते जाएंगे, हम प्यार से जीते प्यार में मरते जाएंगे। अनुराग की आवाज़।

0: और अब अगली बात भी सुन ही लेते हैं अनुराग के साथ। सारा जमाना किसका है दीवाना, आपकी आवाज का, आपकी पहचान का।
1: जी हाँ,
0: इस मंच का नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और अपना गीत, मेरा गीत, आपका गीत, सबका गीत, और गीत से प्रीत लेके आए हैं अनुराग सिन्हा इस मंच पर। और गाते गाते देखो क्या कहने लगे, ये दीवानगी की हद होती है, हद से गुजर जाना भी दीवानगी है, और सारा जमाना क्या है ये कह रहे हैं इस गीत के माध्यम से अनुराग सिन्हा।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम दिल दोस्ती और दुनिया।

इस खास प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रही हैं निकी। जी हाँ, गुरप्रीत, जयपुर रेडियो के संग।

0: श्रोताओं, कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि हम उनको जीते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनकी बातों को, उन एहसासों को और आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है दिल, दोस्ती और डिजिटल दुनिया। डिजिटल दुनिया को तो आप जानते ही हैं, बहुत करीब हैं हम उसके और आप हमारे, इसकी वजह से ही। इसलिए हमारे जयपुर रेडियो की प्रस्तुतकर्ता निकी लेके आई है एक खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है दिल, दोस्ती और डिजिटल दुनिया। क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन और आप सुन रहे हैं एक बहुत ही खास पेशकश, दिल, दोस्ती और डिजिटल दुनिया। कभी एक मैसेज की घंटी, कभी कोई भूला हुआ सा गीत और कभी दो लाइन की बेवजह बातचीत, बस यही से बन जाते हैं वो रिश्ते जो स्क्रीन से उतरकर सीधा दिल में घर कर लेते हैं ना। आज का ये एपिसोड एक ऐसे ही 6 साल की म्यूजिकल जर्नी का सेलिब्रेशन है, एक ऐसा ताल्लुक जो सुरों से बंधा, जिसमें दोस्ती परवान चढ़ी और दिल खुद ब खुद करीब आ गए। ये वो रास्ता है दोस्तों जिसकी मंजिल का पता किसी को नहीं था, पर हर कदम पर ऐसा लगा जैसे मेरी मंजिल यही है, इसी पल में है। और जब हर मोड़ पर मंजिल का एहसास हो तो वो राह मंजिल से भी खूबसूरत हो जाती है। आपने महसूस किया होगा ना ये भी। और यही है आज का हमारा शो, दिल, दोस्ती और डिजिटल दुनिया। 6 साल का वो एहसास जहां अजनबी हम सफर बने, धुने यादें बनी और यादें जिंदगी। आज निक्की यानी हमारी गुरप्रीत उन लम्हों को, उन नगमों को, उन मुस्कुराहटों को आपके साथ फिर से जीना चाहती है। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, दिल के दरवाजे खोलिए, क्योंकि अब शुरू होती है दास्तान निक्की की जुबानी।
2: वक्त बदलता रहा, जमाने बदलते रहे, मिलने के अंदाज और बहाने बदलते रहे, मगर दिल से दिल तक पहुंचने का सिलसिला नहीं बदला। बस रास्ते नए हुए और रिश्ते बनते गए। थैंक यू सुदर्शन, इतनी खूबसूरत और दिल से की गई ओपनिंग के लिए एंड सेटिंग अ परफेक्ट बिगनिंग टू आवर प्रोग्राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निकी और आप सभी का दिल से स्वागत है दिल, दोस्ती और डिजिटल दुनिया में। मेरी जिंदगी में कई ऐसी तारीखें हैं जिन्हें मैं दिल के बहुत करीब रखती हूँ, और उन खूबसूरत तारीखों में एक तारीख और शामिल है, 9 जून 2020। एक ऐसी तारीख जिसने मुझे ये एहसास कराया कि डिजिटल दुनिया सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं, ये लोगों को जोड़ने का एक जरिया भी है। आज जब हम इस दौर में जी रहे हैं तो शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जिसकी जिंदगी को डिजिटल दुनिया ने किसी न किसी रूप में छुआ ना हो। किसी को दोस्त मिले, किसी को सीखने का मंच मिला, किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, और किसी को ऐसे लोग मिले जो दूर होकर भी अपने बन गए। एंड टुडे वी विल चेरिश ऑल दोस मोमेंट्स। सुदर्शन के साथ साथ मेरे इस 6 साल के सफर के कुछ और खास साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और सोशल मीडिया के अपने अनुभव और एहसासों को हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं सुदर्शन पुणे से।

देखो मेरे हिसाब से डिजिटल दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है बिना मिले सजाओ महफिल। ये दुनिया हमें सिर्फ स्क्रीन देती है, पर हमने स्क्रीन को आईना बना लिया। यहाँ हमने वॉइस नोट्स में धड़कनें सुन ली, इमोजीज में आंसू पढ़ लिए और डीपी के पीछे छुपे मूड को भी भाप लिए। 2G के जमाने में हम लोगों ने 5G वाली यारी निभाई है बॉस। इस डिजिटल दुनिया ने सिखाया कि दुनिया सिर्फ मैप्स पे ही होती है, दिलों में नहीं। कोई कहाँ भी रहता हो लेकिन शाम को हम सब साथ आते हैं और वहां पे एक महफिल सजाते हैं। 6 साल में हमने सिर्फ गाने फॉरवर्ड नहीं किए, गाने सिर्फ गाए नहीं, हमने मंडे ब्लूज बांटे, बर्थडे बैशेस किए और दिल की बात बिना बोले समझ ली। सो मेरे लिए अगर बोलोगी तो तोहफा ये वाला है कि ऑनलाइन का वो ग्रीन डॉट, वो जब दिखता है ना तब लगता है कोई अपना है। और क्या कहूं, रिश्तों का मौसम भी अजीब होता है, जब दिल मिल जाए तो हर बेरंग लम्हा भी रंगीन हो जाए। और इसी रंगीन एहसास के साथ मैं तुम्हें भी थैंक यू बोलना चाहता हूं निक्की, हमेशा ऐसे ही साथ रहो। और जब बात अब मौसम की निकली है तो क्यों ना एक मौसम का गाना सुन ले। चलिए हमारी आवाजों में आज का इस शाम का पहला नगमा, ये मौसम का जादू।

0: तेरे साथ बिताए हर लम्हे का जादू है। दोस्तों, अजीब बात है ना, कभी कभी एक गाना वो सब कह जाता है जो लोग घंटों की बातचीत में भी नहीं कह पाते। और डिजिटल दुनिया की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि यहाँ लोग पहले प्रोफाइल से मिलते हैं और फिर धीरे धीरे दिल से जुड़ जाते हैं। लेकिन समय के साथ एक सवाल मैं अक्सर सोचती हूँ कि आखिर रिश्तों की असली पहचान क्या है? क्या रोज की बातचीत, क्या साथ बिताया गया समय, या फिर वो अपनापन जो वक्त, दूरी, हालात बदल जाने के बाद भी बना रहता है। और इस बारे में मैं जानना चाहूंगी कृति जैन से, जो मेरे इस सफर में शुरुआत से मेरे साथ रही हैं। कृति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या महत्व रहा, और आपके हिसाब से आखिर कुछ लोग हमारी जिंदगी की कहानी में हमेशा क्यों बने रहते हैं?
1: निकी, सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे हर लाइक में एक खुशी और हर नोटिफिकेशन में एक इंतजार छुपा हुआ था। हर एक नोटिफिकेशन पर ऐसा लगता था जैसे कोई अपना पूछ रहा है कि अपनी खामोशी में मुझे क्यों तलाश रहे हो। अपनी धड़कनों से पूछो, मेरा भी एक बसेरा है वहां। और कहते हैं इश्क का एक असूल होता है जनाब, मुड़कर देखोगे तो मोहब्बत मानी जाएगी। जैसे मुझे तुम्हारी नोटिफिकेशन का इंतजार था, वैसे ही तुम्हें भी शायद वो नोटिफिकेशन का इंतजार रहता होगा। और कहीं ये मोहब्बत, कहीं ये प्यार, कहीं ये लगाव अगर दोनों तरफ हो जाए जैसा कि हमारे रिश्ते में हुआ था, तो ऐसा लगता है कि जैसे छू गया जब कभी उसका ख्याल, दिल मेरा उसी को ढूंढता रहा। कल उसका जिक्र छिड़ गया था घर में और घर देर तक महकता रहा। ऐसे ही मेरे जीवन में धीरे धीरे मिठास खोलते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पहले मेरे दिल तक और फिर मेरे घर में खुशबू बनकर छा गई मेरी छोटी सी निकी। जैसे दिल कह उठा,
2: बस वहीं तक जाना है मुझे, जहां मिल जाओ तुम मुझे।
1: चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत मेरी, मतलब कृति जैन की और निकी की प्यार भरी आवाजों में।

0: दिल अगर बोल पाता तो लफ्जों में ये बात होती, तुम ही हो ख्वाब भी और तुम ही हकीकत भी। दोस्तों, शायद जिंदगी के कुछ रिश्ते इसी तरह बनते हैं, जो ना वक्त देखते हैं ना दूरी, बस दिल से दिल तक चलते रहते हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया की एक और खूबसूरत बात ये भी है कि यहाँ कभी कभी कुछ लोग सिर्फ अपने शब्दों से हमारी जिंदगी में एक खास जगह बना लेते हैं। और इसी एहसास को आगे बढ़ाते हुए हम जुड़ रहे हैं मुंबई से अभिषेक के साथ। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से इस डिजिटल दुनिया में एक दूसरे को सपोर्ट करना कितना मायने रखता है।
1: कहते हैं ना, कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। सो अभिषेक, क्या आप मानते हैं कि किसी का एक तारीफ भरा मैसेज या एक छोटा सा हौसला बढ़ाने वाला लफ्ज या सिर्फ ये एहसास कि कोई आप पर विश्वास करता है, क्या ये किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है?
2: नमस्कार दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो शायद ये भी नहीं जानते कि उन्होंने हमारे जीवन पर कितना गहरा असर डाला है। जरूरी नहीं कि वे हमारे परिवार का हिस्सा हों या हमारे सबसे करीबी दोस्त हों। कभी कभी एक शिक्षक, एक सहकर्मी, एक दोस्त या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिससे हमारी मुलाकात सिर्फ कुछ ही समय के लिए हुई हो, वह भी हमारी सोच बदल सकता है। कभी उनकी कही हुई एक बात, कभी उनका दिया हुआ एक छोटा सा प्रोत्साहन और कभी सिर्फ उनका हम पर विश्वास भर करना। अक्सर जो लोग कहते हैं कि ये सॉन्ग गाओ, तुम्हारी आवाज़ पर बहुत अच्छा लगेगा, तो ये उनका आप पर विश्वास ही होता है जो बहुत हिम्मत देता है और आपके लो फेज में दोबारा खड़े होने की हौसला देता है। ये सब बातें उस समय भले ही छोटी लगें, लेकिन बाद में एहसास होता है कि उन्हीं ने हमें आगे बढ़ने की ताकत दी थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि ये यात्रा सिर्फ हमारी नहीं थी, उसमें उन सभी लोगों का योगदान था जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमारा साथ दिया, हमें प्रोत्साहित किया और मुश्किल समय में उम्मीद बनाए रखने में हमारी मदद की। शायद इसीलिए जीवन में सफलता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कृतज्ञता का भाव, क्योंकि जो इंसान अपने सफर में साथ देने वालों को याद रखता है वह कभी अकेला नहीं हो सकता। आज मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कभी ना कभी किसी के जीवन में रोशनी बनने का काम किया है। और निकी जी ने तो ये काम लगातार 6 साल किया है BML के लिए। तो इसी भावना के साथ एक गीत जो निकी जी के साथ गाया है, उन तमाम अनमोल लोगों के नाम।

0: क्या खूबसूरत बात कही अभिषेक। कभी कभी एक छोटा सा एहसास और हौसला आगे बढ़ने की हिम्मत दे जाता है, और शायद इसीलिए कहते हैं ना, हर महफिल को रोशन चिरागों से नहीं किया जाता, कुछ जगहें लोगों की मुस्कुराहटों से जगमगाती है। और हर कम्युनिटी की पहचान उसके टैलेंट से तो होती ही है, लेकिन सिर्फ टैलेंट से नहीं होती, बल्कि उसकी एनर्जी, हंसी, मस्ती और उन लम्हों से होती है जो सालों बाद भी चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो आज बात करते हैं उसी पॉजिटिविटी की, और अपने दिल की बात साझा कर रही हैं मेरी खास दोस्त ऋतु श्रीवास्तव दिल्ली से।
1: हेलो मेरे तो, मुझे लगता है कि किसी भी कम्युनिटी की असली खूबसूरती सिर्फ उसके टैलेंटेड लोगों से नहीं बनती, बल्कि उस खूबसूरत एहसास से बनती है जिसे वहाँ का हर एक सदस्य एक दूसरे को देता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ लोग सिर्फ मिलते हैं, बातें करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ लोग यादों का हिस्सा बन जाते हैं और दिलों में बस जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ किसी की खुशी देखकर हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, जहाँ किसी की उपलब्धि पर तालियां सिर्फ औपचारिक तौर पे नहीं होती, दिल से निकलती हैं, और जहाँ एक दूसरे की प्रगति को देख के प्रेरणा मिलती है, प्रतिस्पर्धा नहीं। जहाँ बातें सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, भावनाओं की होती है। जहाँ हंसी में अपनापन होता है, मजाक में मर्यादा होती है, रिश्तों में सम्मान होता है, ऐसी जगह पे पॉजिटिविटी पैदा नहीं करनी पड़ती, अपने आप बहने लगती है। और शायद इसी वजह से ऐसी कम्युनिटीज सिर्फ याद नहीं रहती, दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए बस जाती है। ऐसी एक जगह है BML फैमिली। मैं भी स्टार मेकर में BML फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बनी, जहाँ लोग सिर्फ अपनी कला को साझा नहीं करते, बल्कि खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और एक ऐसी डोर बुनते हैं जो दूरियों के बावजूद एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं। मैं जब भी इन रिश्तों के बारे में, इनके साथ बिताए गए पलों के बारे में सोचती हूँ, तो सिर्फ चेहरे पे एक मुस्कान और मन में सुकून के एहसास के साथ खुद को पाती हूँ। इसी फैमिली में एक रब्ता मैंने मेरे एक दोस्त निकी के साथ भी जोड़ा, और आज अपने उन्हीं एहसासों को अपनी आवाज के साथ एक गीत में जोड़ा है। तो चलिए 7 मिनट के सुनते हैं कुछ तो है तुझसे रब्ता।

0: क्यों दिखी? कुछ तो है तुझसे रब्ता, वरना ऐसे कैसे होता? कैसे कहूँ कितना खास है तू, हर खुशी का एहसास है तू। मांगा था जिसे दुआओं में कभी, आज मेरी हर दुआ का जवाब है तू। एंड आई अग्री विथ ऋतु कि किसी भी सफर को यादगार सिर्फ उसकी मंजिल नहीं बनाती, बल्कि वो लोग बनाते हैं जो उस सफर में साथ चलते हैं। और जब माहौल में पॉजिटिविटी हो तो नए लोगों से मिलना, नई बातें सीखना और नए रिश्तों को अपनाना भी आसान हो जाता है। सो फ्रेंड्स, एक बात सोचिए, अगर हम हमेशा अपनी ही दुनिया में रहें और नए लोगों या नए एक्सपीरियंसेस को मौका ही ना दें, तो शायद हम जिंदगी की बहुत सी खूबसूरत चीजों से वंचित रह जाएंगे। कभी कभी एक नई मुलाकात, नई दोस्ती या नया अनुभव हमारी सोच ही नहीं, हमारी जिंदगी भी बदल देता है। इसी थॉट को शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से राजीव जी। राजीव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से नए लोगों और नए एक्सपीरियंसेस के लिए खुद को ओपन रखना कितना जरूरी है?
1: बहुत सही बात बोली निकी जी आपने कि यदि हम अपने ही दुनिया में मस्त रहें और हम नई चीजों को और नए आने वाले अवसरों को मौका ना दें, तो शायद हम बहुत सी खूबसूरत चीजों से वंचित रह जाते हैं, और उसको हम हिंदी में कूप मंडूक बोलते हैं। आज का समय ऐसा है कि हमको आने वाली नए आयामों को, नए अवसरों को अपने काम में, अपने विहार में उसको जगह देनी पड़ेगी, और यही शायद हम अपने नई जनरेशन को भी बोलते हैं कि प्लीज ओपन योरसेल्फ टू एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स। आज देखिए इतने अच्छे अच्छे एप्स आते हैं रिलेटेड विद एवरी फील्ड, और उसमें हमारे बहुत काम के रहते हैं, बट यदि हम उनको एक्सेप्ट ना करें तो शायद हम बहुत अच्छे नई चीज़ों से, नए आयामों से वंचित रह जाएंगे। लाइकवाइज मैं म्यूज़िक फील्ड का हूँ, मुझे आई लाइक टू सिंग, और मैं काफ़ी समय से सिंगिंग से जुड़ा हुआ हूँ। यदि हम पहले की बात करें तो पहले हमारे पास इतने अवसर नहीं थे कि हम अपनी सिंगिंग को, अपनी जो इनर एबिलिटी है उसको स्प्रेड अप कर पाए, बट देखिए जब से ये सोशल मीडिया आया, नए नए ऐप्स आए, सो जैसे आई एम इन स्टार मेकर, आई एम इन BML फैमिली इन स्टार मेकर, तो जब हम स्टार मेकर से जुड़े, हम एक फैमिली से जुड़े, तो हमें बहुत से नए गायक कलाकार मिले जिनके साथ हमने अपनी जो एबिलिटी है सिंगिंग की उसको और सजाया संवारा, बहुत कुछ सीखा उनके साथ मिलके, बहुत से नए दोस्त बने हमारे एक फैमिली में, एक प्लेटफॉर्म पे जहां पर कि हमें अपनी सिंगिंग को निखारने का बहुत मौका मिला। तो ये मैं बिल्कुल मानता हूं निकी जी कि हमें हमारी पुरानी बातों पर ही कायम न रह के हमें नए आने वाले आयामों को, नए डिजिटल वर्ल्ड को, नए एप्स को जो हमारे काम से रिलेटेड हैं उनको वेलकम करना ही चाहिए और उनके लिए ओपन रहना चाहिए। थैंक यू।
0: बिल्कुल राजीव जी, जिंदगी किताब की तरह नहीं होती जहां हर पन्ने का अंजाम पहले से लिखा हो, और शायद इसलिए जिंदगी हमें बार बार नए लोगों और नए रिश्तों से मिलवाती है ताकि हम अपनी कहानी खुद लिख सकें। और ये सफर तब और भी खूबसूरत बन जाता है जहां सिर्फ यादें नहीं, लोग जुड़ते हैं। और आज का अगला गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी आवाज नहीं है बल्कि उन सबकी आवाजें भी शामिल हैं जो इस सफर का हिस्सा रहे हैं। एक गीत, कई आवाजें, और उन आवाजों से जुड़ी अनेक यादें। तो आइए सुनते हैं हमारी पूरी BML फैमिली की आवाजों से सजा हुआ ये खास गीत।

या ना रहे हम, पर ये यादें जरूर रहेंगी। हर मुस्कान के पीछे हमारी कहानी मुस्कुराती रहेगी। वक्त आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये लम्हे, ये यादें हमारे दिलों में कहीं ठहर जाएंगे।

मुलाकातें याद बनकर नहीं आती, वो जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत बन जाती है, जिसके बिना भी जिंदगी चल तो जाती है, पर जिनके साथ हर लम्हा थोड़ा और जीने लायक लगता है। वक्त आगे बढ़ता रहता है, रास्ते बदलते रहते हैं।

0: अजीब बात है ना, वक्त का पता ही नहीं चलता। कल जो लोग अजनबी थे, आज उनकी आवाजें जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का हिस्सा बन चुकी हैं। और शायद इसलिए कुछ बातें नजर नहीं आती, लेकिन उनका असर जिंदगी भर रह जाता है, जैसे दुआओं का साथ और जैसे किसी का हम पर किया गया भरोसा। और कहते हैं ना कि रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन जब रिश्ते डिजिटल दुनिया में बनते हैं, जहां लोग मीलों दूर होते हैं और कई बार कभी मिले भी नहीं होते, तो एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या डिजिटल दुनिया में भी भरोसा उतना ही जरूरी है जितना वास्तविक दुनिया में? और क्या बिना मिले भी एक सच्चा भरोसा बन सकता है? इसी खूबसूरत विषय पर अपने विचार साझा कर रही हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं शैला बेंगलोर से।
1: हाय निकी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग 6 इयर्स इन बीएमएल। आई हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ बीएमएल फॉर ऑलमोस्ट 6 इयर्स नाउ, एंड दैट्स वेयर माय कनेक्शन विद द डिजिटल वर्ल्ड बिगन। ये बात बिल्कुल सच है कि हर रिश्ते की नींव भरोसे पर ही टिकी होती है। जब भी कोई रिश्ता या फ्रेंडशिप होती है, उसमें एक आत्मीयता फील होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच होने चाहिए और एक दूसरे के साथ अपनापन महसूस होना चाहिए। ये सब इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और जरूरत के वक्त एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, और इसमें ट्रस्ट या एक दूसरे पर भरोसा उतना ही जरूरी है जितना वास्तविक दुनिया में है। इनफैक्ट डिजिटल दुनिया में किसी पर भरोसा करना और भी डिफिकल्ट और ट्रिकी होता है, क्योंकि हमने सामने वाले व्यक्ति को ना तो प्रॉपरली देखा होता है और ना ही अक्सर कभी मिले होते हैं। और हम दोनों पिछले 6 सालों से इसी बात के लिविंग एग्जाम्पल है। हमने कभी एक दूसरे को सामने से नहीं देखा, सिर्फ वीडियोस में ही देखा है, और ना ही हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं या फ्रीक्वेंटली बात करते, लेकिन जब भी बात होती है तो वो भरोसा, वो प्यार और वो अपनापन हमेशा महसूस होता है। आप जब भी मुझे ना शैलोदी कहकर बात करती हो, तो मुझे लगता है कि वो प्यार और वो भरोसा महसूस होता है। और मेरे हिसाब से डिजिटल रिलेशनशिप में ट्रस्ट और कनेक्शन बहुत हद तक सामने वाले व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है। सो डिजिटल रिलेशंस कैन बी ट्रस्टेड।
0: थैंक यू शैला जी। बिल्कुल, किसी भी रिश्ते की मजबूती सिर्फ उस रिश्ते पर नहीं, बल्कि उसे निभाने वाले लोगों पर भी डिपेंड करती है। और इसी बात पर अर्ज किया है, एक चाहत है मेरी, एक चाहने वाला ऐसा हो जो चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा हो। और जिंदगी हमें हर मोड़ पर कुछ ऐसे लम्हे दे जाती है जिसकी अहमियत हमें उस वक्त समझ नहीं आती। होता होगा आप सबके साथ भी। और कभी आपने ये नोटिस किया है कि घड़ी की सुई हर दिन एक ही रफ्तार से चलती है, फिर भी कुछ दिन सालों जैसे लगते हैं और कुछ साल पल भर में गुजर जाते हैं। जैसे कि आज का सफर, ये मौसम का जादू है मितवा, इससे शुरू हुआ था और वक्त हवाओं की तरह बहता चला गया, पता ही नहीं चला और कब हम यहां तक आ पहुंचे। और जब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं, बस दिल में एक ही एहसास जाग रहा है, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। तो आइए सुनते हैं अगला गीत सुदर्शन की आवाज में।

0: ये गीत जैसे यादों की एक खिड़की खोल गया हो, और यकीन मानिए इन खूबसूरत लम्हों को हम बरसों याद करेंगे। और जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सिर्फ यही एहसास होता है कि जिंदगी को समझने से ज्यादा उसे जीना जरूरी है। उसकी हर खुशी को, हर मूड को, हर नए दिन को। और शायद इसलिए मेरे दिल से एक ही बात अक्सर निकलती है, कुछ ख्वाब पूरे हुए, कुछ अभी बाकी हैं। कुछ ख्वाब पूरे हुए, कुछ अभी बाकी हैं। कुछ यादें मीठी हैं, कुछ आंखों में झांकी है। फिर भी हर दिन इंतजार रहता है, फिर भी हर दिन तेरा इंतजार रहता है। ऐ जिंदगी, तुझसे मिलकर हर ख्वाब आबाद रहता है। और इसी एहसास के साथ मेरी जिंदगी से, मेरे दिल के बहुत करीब, ये आखिरी गीत आप सबके नाम।
1: और इसे आज आपके सामने जो ला रहे हैं वो भी है हमारे एक सोशल मीडिया के एक बहुत ही प्यारे से दोस्त, जो हमारी आवाजों को आप तक पहुंचाते हैं, हमारे जज्बातों को आप तक पहुंचाते हैं और आपके संदेश हम तक लाते हैं, हमारे प्यारे व्यास जी जयपुर रेडियो से। आई होप यू आर एंजॉइंग। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा।

0: your जिंदगी.
1: With this song, our show comes to an end. लेकिन जाने से पहले मैं आप सबके लिए एक छोटा सा काम छोड़कर जाना चाहूंगी. पेपर एंड पेन उठाइए. ले लिया? अब लिखिए एक सवाल. आखिर मैंने डिजिटल दुनिया क्यों ज्वाइन की थी? शायद उस जवाब में आपको अपना पुराना जुनून मिले, कोई भूला हुआ सपना मिले, या फिर वो वजह मिले जिसके लिए आपने यह सफर शुरू किया था. और जब जवाब मिल जाए तो उसे संभाल कर जिंदा रखिएगा. इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं. ये सिर्फ एक शो का अंत नहीं, एक एहसास का सिलसिला है. सो मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी कहानी लिखते रहिए. फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पर किसी नई बात के साथ. नमस्कार.

दोस्ती और डिजिटल दुनिया। आपने सुना ये खास प्रोग्राम, इसे प्रस्तुत कर रही थी निकी यानी गुरप्रीत जयपुर रेडियो की ओर से। आपकी आवाज, आपकी गीत,

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में